सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: राधे राधे प्यारे भक्तों, जब तक वह हर बात का उत्तर देता रहता है तब तक संसार उसे कमजोर समझता रहता है, पर जिस दिन वह शांत रहना सीख जाता है उसी दिन से उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से भी जीते जाते हैं। जो व्यक्ति हर अपमान का जवाब देने दौड़ता है, हर ताने पर टूट जाता है, हर आलोचना पर क्रोधित हो जाता है, वह कभी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर समय को उत्तर देने देता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है, क्योंकि शब्दों में उतनी ताकत नहीं होती जितनी मौन में होती है। शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं पर मौन सीधे आत्मा को छूता है। इसलिए जब जीवन में कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझना छोड़ दें, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, शांत रहना, मुस्कुराना और अपने कर्मों पर ध्यान देना, क्योंकि समय से बड़ा न्याय करने वाला कोई नहीं है। यह संसार बहुत विचित्र है, यहाँ लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी सहनशीलता को डर समझेंगे, तुम्हारी सरलता का फायदा उठाएंगे। लेकिन तुम विचलित मत होना, क्योंकि पर्वत कभी यह साबित नहीं करता कि वह कितना विशाल है, समुद्र कभी ये नहीं कहता कि उसकी गहराई कितनी अधिक है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली होता है वह कम बोलता है, वह हर किसी के सामने अपने दुख नहीं रोता, हर किसी के सामने अपनी योजनाएं नहीं बताता, हर किसी के सामने अपनी भावनाएं नहीं खोलता, क्योंकि उसे पता होता है कि संसार शब्दों का नहीं परिणामों का सम्मान करता है। इसलिए अपने मौन को अपनी शक्ति बनाओ, जब क्रोध आए तब चुप रहो, जब अपमान मिले तब चुप रहो, जब कोई तुम्हें उकसाए तब चुप रहो, क्योंकि उस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध है। क्रोध आते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है और फिर मनुष्य ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पश्चाताप उसे जीवन भर करना पड़ता है। इसलिए जिसने मौन की शक्ति सीख ली उसने आधा जीवन जीत लिया। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तब समझ जाना कि वह तुम्हारी शांति छीनना चाहता है, और जिस दिन तुमने अपनी शांति खो दी उसी दिन तुम हार गए। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों के शब्द तुम्हें भीतर से हिला ना सकें। याद रखो, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे तुम्हारे ऊपर भी आएंगे, इसलिए हर विवाद में उतरना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को समय उत्तर देता है, कुछ लोगों को उनका कर्म उत्तर देता है और कुछ लोगों को उनकी गलतियां स्वयं सजा दे देती हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा मन करेगा कि तुम भी सामने वाले को कठोर उत्तर दो, तुम भी उसे उसकी औकात दिखा दो, तुम भी अपने शब्दों से उसे चोट पहुंचाओ। लेकिन उसी क्षण स्वयं को रोक लेना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही सबसे महान बनता है। दूसरों को हराना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन है, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखो। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोले तब शांत रहो, जब लोग तुम्हारी निंदा करें तब शांत रहो, क्योंकि सत्य को कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, झूठ हमेशा शोर मचाता है पर सत्य हमेशा शांत रहता है। कभी नदी को ध्यान से देखना, वो रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, उनसे टकराकर रुकती नहीं, बल्कि शांत होकर अपना मार्ग बदल लेती है और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। हर जगह लड़ना आवश्यक नहीं होता, हर किसी को उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बुद्धिमानी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह अपनी सफाई देता फिरता है वह धीरे धीरे भीतर से कमजोर हो जाता है, लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह शांत रहता है और समय को अपना प्रमाण बनने देता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम कम बोलते हो तब तुम अधिक सोचते हो, जब तुम अधिक सोचते हो तब तुम्हारे निर्णय बेहतर होते हैं, और जब तुम्हारे निर्णय बेहतर होते हैं तब जीवन बदलने लगता है। इसलिए अपने शब्दों को व्यर्थ मत बहाओ, हर किसी को अपने मन की बात मत बताओ, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी कमजोरियां जानना चाहते हैं ताकि समय आने पर तुम्हें चोट पहुंचा सकें। इसलिए अपनी योजनाएं अपने तक रखो, अपने सपनों को अपने भीतर सुरक्षित रखो और अपने लक्ष्य पर शांत मन से कार्य करते रहो। याद रखो, पेड़ जब फल से भर जाता है तब झुक जाता है, शोर नहीं करता। उसी प्रकार महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता, वह अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे पता होता है कि असली ऊंचाई शांत रहने में है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं की प्रशंसा करता है वह भीतर से खाली होता है, लेकिन जो शांत रहकर कर्म करता है उसकी सफलता स्वयं बोलती है। इसीलिए अपने जीवन को शब्दों से नहीं कर्मों से महान बनाओ। संसार को बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, समय आने दो, तुम्हारे परिणाम स्वयं सबको उत्तर दे देंगे। जब तुम्हारा मन टूट जाए तब भी हर किसी के सामने रोना मत, क्योंकि संसार आंसू नहीं समझता, वह केवल तमाशा देखता है। अपने दुखों को अपनी शक्ति बनाओ, अकेले बैठो, स्वयं को समझो, अपने मन को मजबूत करो और फिर नए साहस के साथ उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अंधेरी रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही सुंदर होती है। इसलिए कठिन समय में घबराना मत, शांत रहना, धैर्य रखना और विश्वास रखना कि ये समय भी बीत जाएगा। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे तब चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को शब्दों से नहीं दूरी से उत्तर दिया जाता है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल मन की शांति छीनते हैं। इसीलिए जहां सम्मान न मिले वहां चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर होता है। स्वयं को उन लोगों के लिए मत बदलो जो कभी तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हीरा यदि कोयलों के बीच भी पड़ा रहे तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती। अपने जीवन को इतना शांत बना लो कि दूसरों का शोर तुम्हें परेशान ना कर सके। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है, और जब बुद्धि सही निर्णय लेती है तब जीवन में दुख कम होने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, अपने भीतर उतर कर देखो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। संसार को खुश करने में पूरा जीवन मत गंवा दो, क्योंकि संसार कभी खुश नहीं होता। यदि तुम सफल हो जाओगे तो लोग जलेंगे, यदि असफल हो जाओगे तो लोग हंसेंगे। इसीलिए लोगों के अनुसार नहीं अपने सत्य के अनुसार जीवन जीना सीखो। जीवन में सबसे कठिन कार्य स्वयं को शांत रखना होता है। बाहर की लड़ाइयां जीतना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना बहुत कठिन होता है। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, जब तुम्हारी मेहनत को लोग छोटा साबित करने लगे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, तब भीतर आग जलती है। मन चाहता है कि सबको उत्तर दिया जाए, सबको उनकी गलती दिखाई जाए, लेकिन याद रखो हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारी खामोशी ही सामने वाले को सबसे बड़ा उत्तर दे देती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही परिस्थिति का स्वामी बनता है। सोचो, यदि आकाश हर उड़ते पक्षी से लड़ने लगे, यदि समुद्र हर लहर से क्रोधित होने लगे, यदि पर्वत हर चलती हवा को रोकने लगे, तो क्या वे इतने विशाल रह पाएंगे? नहीं, उनकी महानता उनकी स्थिरता में है। उसी प्रकार तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारी शांति में छिपी हुई है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि छोटी छोटी बातें तुम्हारे मन को विचलित ना कर सके। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कौन तुम्हारी आलोचना करता है, कौन तुम्हें समझता नहीं, इन सब बातों में उलझकर अपना जीवन मत खो दो। क्योंकि जिसने स्वयं को समझ लिया उसे संसार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस समय टूटना मत, उस समय स्वयं को अकेला मत समझना, क्योंकि मौन में भी ईश्वर तुम्हारी हर बात सुन रहा होता है। जब तुम चुप होकर अपने दर्द को सहते हो तब तुम्हारा धैर्य तुम्हें भीतर से और मजबूत बना देता है। याद रखो, सोना जितना अधिक आग में तपता है उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाता है। बहुत से लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने हर किसी को अपने मन तक पहुंचने की अनुमति दे दी है। हर व्यक्ति की बात को दिल से लगाना, हर आलोचना पर परेशान हो जाना, हर ताने पर टूट जाना, यही मनुष्य के दोष का कारण है। इसलिए अपने मन के द्वार पर पहरा लगाना सीखो। हर किसी को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो, क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल तुम्हारी शांति नष्ट करने आते हैं। वे तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि तुम शांत रहे तो उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि क्रोध को बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया चाहिए होती है, और जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब सामने वाला स्वयं हार जाता है। याद रखो, जो पेड़ जितना ऊंचा होता है वह उतना ही शांत होता है। छोटी झाड़ियां ही हवा चलने पर अधिक शोर करती हैं। उसी प्रकार जिन लोगों के भीतर ज्ञान कम होता है वे अधिक बोलते हैं, अधिक विवाद करते हैं, अधिक दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनके भीतर सच्चा ज्ञान होता है वे शांत रहते हैं। उन्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता, इसलिए व्यर्थ के विवादों से दूर रहो। हर किसी को समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोग समझना नहीं चाहते, वे केवल बहस करना चाहते हैं। जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का भी लोग गलत अर्थ निकालेंगे, तुम्हारी सच्चाई पर भी लोग संदेह करेंगे, तुम्हारे त्याग को भी लोग कमजोरी कहेंगे। लेकिन तुम निराश मत होना, क्योंकि सूर्य को कभी यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्रकाश देता है, उसका अस्तित्व ही उसका प्रमाण है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। इसलिए दूसरों की सोच बदलने में अपनी ऊर्जा मत नष्ट करो, अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। जब मनुष्य मौन की शक्ति को समझ लेता है तब वह छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ देता है। फिर उसे हर जगह सम्मान पाने की भूख नहीं रहती। फिर वह लोगों की स्वीकृति के लिए नहीं जीता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि असली शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए स्वयं के साथ समय बिताना सीखो। सुबह की शांति को महसूस करो, रात की नीरवता को सुनो, अपने मन की आवाज को पहचानो। जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे तब संसार की कोई आवाज तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। ये मत सोचो कि चुप रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, नहीं, कई बार सबसे शांत व्यक्ति के भीतर सबसे बड़ा साहस छिपा होता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सबसे अधिक शोर करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर आत्मविश्वास होता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मूल्य को समझना होगा, हर जगह स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारी कीमत समझते हैं उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, और जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके सामने लाख प्रयास कर लो वे कभी नहीं समझेंगे। कभी किसी के कटु शब्दों को अपने हृदय में मत बसने देना, क्योंकि लोग अक्सर वही बोलते हैं जो उनके भी।
0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।

चित्रकूट में माताओं से श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत शत्रुघ्न मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है, अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां 2 दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?

0: शल्यम हॉस्पिटल,
1: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
12: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
13: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
14: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
15: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434003।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल,
11: पहले मुख्य हालचाल। नव निर्माणाधीन पंचायत भवन का DDC ने किया निरीक्षण। 42 राजस्व कर्मचारी और 23 कार्यपालक सहायकों का हुआ ट्रांसफर। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 17 लोगों को आज पुलिस ने भेजा जेल। रेल टिकट जांच अभियान में 2 दर्जन से अधिक यात्रियों को रेलवे ने पकड़ा। बिहार पुलिस की सफलता पर निक्की का हुआ जोरदार स्वागत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश के आलोक में आज उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने मुचका गांव प्रखंड के जमसड़ पंचायत में नव निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों की जांच की। बताया जा रहा है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में पूर्व में भूमि विवाद उत्पन्न होने के कारण कार्य बाधित हो गया था। इसके बाद भूमि विवाद का समाधान होने के पश्चात पुनः निर्माण कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया है। उप विकास आयुक्त ने निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं कार्य के गुणवत्ता को लेकर भी जांच की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्य एजेंसी को निर्देशित किया कि कार्य निर्माण को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि पंचायत के लोगों को पंचायत सरकार भवन का लाभ शीघ्र मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायती राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित कर्मी और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक महकमे में बहुत बड़ा फेरबदल किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। समाहरणालय की जिला स्थापना शाखा के द्वारा इससे संबंधित आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनका स्थानांतरण किया गया है। इनमें 42 राजस्व कर्मचारी हैं और 23 कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तथा आधा दर्जन IT सहायकों को भी स्थानांतरित किया गया है। इन सभी को आगामी 4 जुलाई तक अनिवार्य तौर पर नए कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा 6 जुलाई से सभी निर्मित माने जाएंगे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से विभिन्न मामलों में 17 लोगों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसमें हत्या के प्रयास और शराब की तस्करी तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। वहीं पुलिस ने कई जगहों पर वाहन जांच अभियान भी चलाया। साथ ही पुलिस ने 1,000 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी अलग अलग जगहों से जब्त किया है। इसके अलावा मोटरसाइकिल, कार और मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। ठामे मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के निर्देश पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक शेख रहमान के नेतृत्व में वाराणसी मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर निरंतर टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के छपरा, सिवान, जलालपुर, थामे, मसरख, छपरा कचहरी स्टेशन को आधार बनाकर छपरा कचहरी थामे मसरख रेलखंड पर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलखंड पर चलने वाली सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 2 दर्जन यात्रियों को बिना टिकट के पकड़ा गया और उनसे 12,475 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। टिकट जांच अभियान को देकर अवैध रेल यात्रियों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्टेशनों पर अवैध यात्री उतरकर भागते हुए भी दिखाई दिए। रेल प्रबंधन के द्वारा लगातार टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि लोग रेलवे में चूंकि काफी कम पैसों में टिकट मिल जाता है और कम पैसों में यात्रा होती है, ऐसे में आम जनता का भी जिम्मेवारी है कि लोग उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। रेलवे आपको काफी कम पैसे में यातायात की सुविधा बेहतर तरीके से मुहैया कराता है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो टिकट नहीं खरीदते हैं, जिसके वजह से रेल परिचालन में समस्याएं आती हैं। ऐसे में जनता से भी निवेदन किया गया कि निश्चित रूप से आप उचित और पर्याप्त टिकट खरीद कर ही रेल में सफर करें। मीरगंज नगर परिषद के महैचा गांव के विनोद सिंह की पुत्री निक्की कुमारी ने बिहार पुलिस में सफलता हासिल की है। निक्की जैसे ही सफलता के बाद अपने घर पहुंची तो उनके जानने वाले लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। निकी ने गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वह पुलिस सेवा में जाकर जनता की सेवा करना चाहती हैं और इसी उद्देश्य से निकी ने बिहार पुलिस में प्रयास किया था और उन्हें अब सफलता मिल गई है, जिसके बाद उनके तमाम जानने वाले लोग उन्हें लगातार बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी प्रखंड स्थित बली गांव एवं रोशन टोला गांव में किसानों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा वैज्ञानिक पोषक एवं प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान किसानों को मृदा परीक्षण के महत्व, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसलों की आवश्यकता और इसके अनुरूप संतुलित उर्वरक प्रबंधन, हरित खाद के रूप में ढैंचा एवं सनई की खेती तथा मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के वैज्ञानिक उपायों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव में भी भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने हालांकि इसमें एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अफजल नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, जानलेवा हमला भी किया गया जिसमें दो महिलाओं समेत तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घायलों का इलाज भी चल रहा है और पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और इसी में मोहम्मद अफजल सहित कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया गया है और अन्य फरार आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के शेर गांव और मोहम्मदपुर के मोहम्मदपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में तीन महिलाएं घायल हो गईं। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धवलिया में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर में आपसी विवाद के दौरान लगनी देवी और मुन्ना देवी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं सिद्धवलिया में भी आपसी विवाद में हुई मारपीट में शेर गांव की रेहाना खातून घायल हैं, इनका भी इलाज चल रहा है। सभी घायलों के बयान पर पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर भोरे थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। महिला खजुरिया जीवत छापर की बेहली देवी पति सुरेन तिवारी बताई जा रही है। पुलिस ने गश्ती के दौरान छापेमारी करते हुए खजुरिया पोखरा के पास इस महिला को शराब के साथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर महिला भाग रही थी, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने खदेड़कर इसको पकड़ा है। तलाशी के दौरान इसके पास से 22 शराब की पैकेट मिली, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार किया गया और इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुचायकोट में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बीए की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि जलालपुर परीक्षा देने के लिए यह छात्रा अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। इसी बीच एक ई रिक्शा ने इनके मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे यह छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। यह छात्रा सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गाँव के सुरेश शाह की 24 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी बताई जा रही है। घायल छात्रा को कुचायकोट पीएससी में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में घर में घुसकर मारपीट और नगदी छीनने तथा जेवर इत्यादि छीनने के मामले में पुलिस ने रघुनाथपुर निवासी बिंदा देवी के आवेदन पर गाँव के ही अनिल यादव, सूरत यादव, रामायण यादव, ममता रानी, सुनील यादव तथा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के मलखानपुर थाना के बबलू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने लाठी डंडा और हरवा हथियार के साथ गाली गलौज करते हुए उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट करते हुए जेवरात इत्यादि छीने गए हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोपालगंज के कैलाश होटल के पास शिवाजी स्मृति मंदिर छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के एक विवादित भूमि पर CWJC संख्या 13772/2025 में पारित आदेश के उल्लंघन को लेकर पटना उच्च न्यायालय में आवेदन दिया गया था, जिस पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने पुलिस एवं अंचलाधिकारी के संबंधित प्रतिवादियों को यह बताने का निर्देश दिया है कि उपमंडलाधिकारी अधिकारी गोपालगंज के आदेश का अनुपालन अब तक क्यों नहीं हुआ और इसमें क्या कार्रवाई की गई? याचिकाकर्ता आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार श्रीवास्तव के द्वारा न्यायालय को अवगत कराया था कि ट्रस्ट की संपत्ति पर असामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। इसी मामले में अब पटना उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और इस पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित प्रतिवादियों को यह बताने का निर्देश दिया है कि इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। याचिकाकर्ता आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रस्ट की संपत्ति पर असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, किंतु एसडीओ के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था और इसी में प्रतिवादियों को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सार्वजनिक ट्रस्टों की संपत्ति की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
12: नव निर्माणाधीन पंचायत भवन का डीडीसी ने किया निरीक्षण। 42 राजस्व कर्मचारी और 23 कार्यपालक सहायकों का हुआ ट्रांसफर। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 17 लोगों को आज पुलिस ने भेजा जेल। रेल टिकट जांच अभियान में 2 दर्जन से अधिक यात्रियों को रेलवे ने पकड़ा। बिहार पुलिस की सफलता पर निक्की का हुआ जोरदार स्वागत।
11: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
14: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
15: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
16: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
15: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
17: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
18: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
17: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
19: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
20: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
21: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
22: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
23: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
24: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
22: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
24: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
22: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर

0: सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
1: Well, we thank you so much listeners for tuning in. Namaskar.

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
4: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
5: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
6: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
5: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
7: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
8: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: चाहते हो मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87894-18744।
8: इसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 9155544

0: 48507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो,
3: तो क्या हुआ?
2: तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना?

मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरे दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। जितू

0: Hey guys, this is Ramji Gulati. Thank you for showing so much of love to Tere Bin Kiwe Rawangi. Guys, we've just re-uploaded the song and we need all your support. Jitna pyar aapne pehle diya, please continue to do so. Like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. For those who love me and my team, we'll subscribe here and we're going to promise you, we're going to give you a lot of songs more.
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
13: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
12: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
14: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
12: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
14: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
12: और 90971602।

0: 15 से 25% तक की बढ़ोतरी। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज करेंगे शपथ ग्रहण। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। और मानसून का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार, मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है। योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त DDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख रुपए तक, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में विधानसभा कोटे से नवनिर्वाचित सदस्य आज शपथ

0: ग्रहण करेंगे। इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन विधान परिषद उपभवन सभागार में होगा। सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित कुल 10 सदस्यों में से 8 पहली बार सदन की सदस्यता लेंगे। इनमें निशांत कुमार, अनिल ठाकुर, शिवरानी प्रजापति, ललन कुमार, अशरफ अंसारी, शीला पंडित और पवन सिंह शामिल हैं। वहीं भाजपा के संजय मयूख और राजद के सुनील सिंह पहले भी सदन के सदस्य रह चुके हैं। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू हो गया है। नए कैलेंडर के अनुसार स्नातक कक्षाओं के 8 सेमेस्टर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। लोक भवन ने अपरिहार्य परिस्थिति में कुछ विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र कार्यक्रम में 1 सप्ताह की छूट दी है। रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के 44.40 किलोमीटर लंबे मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक रिपोर्ट।
1: मानसी सहरसा खंड वर्तमान में एकल रेल लाइन है, जहां यात्रियों और मालगाड़ियों का भारी दबाव रहता है। इस मार्ग पर प्रतिदिन 24 जोड़ी यात्री ट्रेनें संचालित होती हैं। साथ ही खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक, रेत और पत्थर जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई भी इसी रेलखंड से की जाती है। रेलवे के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद रेल यातायात अधिक सुचारू होगा, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा और परिचालन दक्षता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही हर वर्ष लगभग 17,64,000 टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी, जिससे कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: पटना सिटी के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के शेष निर्माण को निर्बाध पूरा कराने के लिए आज से अगले आदेश तक यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्माणाधीन पुल पर पिलर संख्या 23 और 67 के बीच तेजी से कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर और कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पर रोक लगाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्तरा, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश भर में मानसून का विस्तार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता से अगले एक सप्ताह तक राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, पश्चिम चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में भारी से अत्यधिक भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अररिया, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और सुपौल जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 1 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग के अनुसार जून महीने में 23 जिलों में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। गया जिले में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि

में प्रदेश में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। बिहार कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए निदेशक बनाए गए हैं। श्री कुमार वर्तमान में CRPF में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्तमान SPG निदेशक आलोक शर्मा का कार्यकाल 21 मार्च 2027 को पूरा होने के बाद अमित कुमार निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल श्री कुमार को SPG में OSD के रूप में तैनात किया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में ईमेल अपडेट करने की सुविधा को निःशुल्क कर दिया है। यह सुविधा आज से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इच्छुक व्यक्ति आधार मोबाइल एप्लीकेशन से अपना ईमेल अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले इस सुविधा के लिए ₹75 का शुल्क निर्धारित था। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। यह विषय उन डॉक्टरों के मानसिक भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है जो अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से T20 क्रिकेट श्रृंखला शुरू हो रही है। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला इंग्लैंड के चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आज टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने की संभावना है। वैभव को संजू सैमसन या ईशान किशन की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि आयरलैंड के खिलाफ दो टी ट्वेंटी मैचों की श्रृंखला के दौरान वैभव सूर्यवंशी को अवसर नहीं देने को लेकर टीम चयन पर सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी के दौरान वांछित अपराधी पांडव गिरोह के मुख्य सरगना संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दानापुर के SDPO अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर हत्या और रंगदारी समेत 26 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में आज से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 जुलाई तक 9 टीमें नगर निगम क्षेत्र के सभी 6 अंचलों में अतिक्रमण और अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पहली बार एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू, नया सत्र आज से, जनवरी में सम सेमेस्टर की पढ़ाई। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है VBG रामजी में न्यूनतम मजदूरी अब ₹300 से कम नहीं होगी। प्रभात खबर ने मौसम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है मौसम की मार, 15 के बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार। दैनिक भास्कर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखता है एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को नुकसान नहीं। अखबार लिखता है E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता। राष्ट्रीय सागर ने मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा वास भूमि प्रमाण पत्र। आज अखबार के शब्द हैं 18 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम आज से लागू। बिहार समेत कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दर में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में नव निर्वाचित 10 सदस्य आज करेंगे शपथ ग्रहण। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। और मानसून का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
9: Now pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: सुनते
2: हैं आप?
1: ठीक है, अपन बताइए
2: और क्या हो रहा है
1: फिलहाल।
2: अच्छा,
1: वर्षा पानी।
2: अच्छा, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, बारिश हुआ की नहीं? आज
2: हुआ है, इधर भी बारिश हुआ है।
1: जी जी, सुना दिए वर्षा पानी।
2: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: हेलो रितिक कुमार बोलता हूँ।
0: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: जी अपना सुनिए, बारिश हुई?
0: हाँ हाँ बारिश तो हुआ है आज, थोड़ा थोड़ा
1: थोड़ा थोड़ा इधर भी हुआ। गाना सुनिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: बदल गई है दुनिया।
0: क्या?
1: हिंदी बदल गई है दुनिया, दुश्मन बन गया है।
0: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: जो पहले आपको सुनी मैं
0: जी जी बिल्कुल। तो गाना प्ले कर रहे हैं और सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
9: बोलबम, हर हर महादेव।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
12: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
13: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
12: तो देर मत कीजिए,
13: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
18: जी नमस्कार मैम।
19: नमस्कार,
18: मैं पप्पू ठाकुर रामदासपुर है, जस्ट बढ़िया थाना कहते हैं, जिला गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
19: जी जी, कैसे हैं आप?
18: बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए कैसे हैं?
19: हम भी अच्छे हैं।
18: बारिश हुई है मैम?
19: हाँ हाँ, आज तो बारिश हुआ है हल्का हल्का।
18: आज सुबह सुबह बारिश हुआ है, हमारे यहाँ से भी बदली छाई हुई है चारों ओर। अपेक्षा है की और बारिश हो जाए।
19: जी
18: सबको मैम बोल रही है। और तो बताइए कैसे हैं?
19: मैं अच्छी हूँ, आप सब बताइए आप कैसे हैं?
18: बढ़िया है, अब दो चार रोज में हम लोग यहाँ भी रोपनी स्टार्ट हो जाएगा।
19: जी हमारे यहाँ भी देखिए, दो चार दिन हमारे यहाँ भी।
18: हाँ हाँ, इधर भी हो रहा है, जिसका बिजला गिरा हुआ है वो लोग का हो रहा है, हम लोग का छोटा छोटा है तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन दो चार दिन के अंदर हो जाएगा।
19: नहीं रोपाई होगा उस टाइम और हो जाए तो।
18: हाँ जी जी जी, सूखने का चांस नहीं रहेगा ना, अभी रोपाई हो जाएगा तो लपड़ पकड़ लेगा वो। गाना की शुरुआत दीजिए, सना मोदी का गाना है दीवाना, राज कपूर साहब का, पते की बात कहेगा जब भी कहेगा दीवाना, ये सॉन्ग है।
19: जी जी, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट
18: करना है? हाँ, जितने पुराने लिस्नर्स है सब लोग सुनने वाले, हो सकता है कि कुछ नए लोग न सुने ये गाने को, लेकिन ये गाने में बहुत रहस्य छिपा है, लोगों को सुनना चाहिए, गाना बहुत अच्छा गाना है, जरूर प्ले करिएगा। सही है मैडम?
19: जी जी बिल्कुल प्ले करेंगे। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैं लालन पास में बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बानी का हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं
1: जी। मुझे गाना सुनना था एक मैडम।
0: बता दीजिए।
1: मुझे गाना सुनना था अरफान सलीम का।
0: गाना कौन सा है?
1: गाने का बोल है परदेश जाके परदेसिया भूल ने जाना सिया।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी, सबसे पहले तो आपको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और जितने भी श्रोतागण है हमारे रिमझिम का सभी को हमें कुछ सुनना चाहता हूँ मेरे परिवार।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: धन्यवाद मैडम।

0: स्कूला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399966999।

0: Now pick your phone up.
1: Hello?
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello?
0: Now pick your phone up.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम 90.4 FM में।
4: नमस्ते। अरे 12 घंटे तुम परेशान थे, 11 तक सुबह हो गया क्या?
3: नहीं नहीं, अभी तो 15 हो रहा है और 15 मिनट रिकॉर्ड होगा। मेरा बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
4: मेरा भी ठीक है। आज तो थोड़ा राहत है आज।
3: जी जी, आज थोड़ा राहत है, बारिश हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, इसीलिए।
4: फिल्म का नाम है नाम
3: और गाना कौन सा है?
4: गाना ये है कल चला जाएगा।
3: और सॉन्ग किसी
4: भी बहुत है, वो गुड़िया और सूरज विकास रंजीत है, मेरा मोहम्मद गर्मा, लाल बाबू है मेरा गर्मा।
3: हाँ हाँ, चलिए बढ़िया है। तो गाना प्ले कर रहा है, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: हेलो, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
1: अच्छा ठंडी बात सर।
0: आज थोड़ा मौसम ठीक है, बारिश हुआ है ना, इसीलिए। चलिए कम से कम उतना भी तो हुआ।
1: हाँ उतना तो हो गई, बहुत बहुत बड़ी होते पंजी आ गई बा। हाँ सर, देखो गाना सुना दी हमें।
0: बता दी कौन सा गाना सुने।
1: रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा, गोपी फिल्म का।
0: जी जी
1: हाँ।
0: और सब ठीक बा ना।
1: हाँ सब ठीक बा, आशीर्वाद बा।
0: चलिए ठीक है, क्या काम बा। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: हाँ ठीक है।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 91555485507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
10: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
16: Hello.
17: Break ke
4: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
14: इसके लिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सुनाइए कैसे हैं?
16: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
14: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, कृष्णपुर बजान पूर्वी चंपारण से।
16: जी और बताइए क्या हो रहा है?
14: जी अभी तो दुकान पे हूँ और आपकी कोयल जैसी मधुर आवाज सुनकर बातें कर रहा हूँ।
16: अच्छा जी,
14: और मौसम कैसा है उधर?
16: मौसम अभी तो बारिश हुआ है तो ठीक है।
14: जी जी वैसा ही मौसम, 2 घंटा पहले हल्का बारिश हुई है, इधर मौसम सुहाना बना हुआ है।
16: चलिए बढ़िया है, कुछ तो राहत मिला।
14: जी जी, गर्मी से कुछ राहत मिली है।
16: और बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
14: जी फिल्म का नाम है अंदाज और गाने का बोल है आएगा मजा बताता है।
16: अच्छा चलिए ठीक है, और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
14: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ।
16: जी
14: और दोस्तों के संजय शाहजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, अंचल कुमार जी, कंसराज जादव जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू उस विकास, अभय कुमार, सुदेश कुमार, अजय कुमार, आयु कुमार, सोनू कुमार, उपभोग प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपालगंज जिले के शंकरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुनीता जी, सूर्यमोहन जी, नदीम सिंह जी, जितेंद्र जश्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी भारती जी की तरह सुखी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
16: जी चलिए बढ़िया है, तो फिर गाना प्ले करते हैं।
14: जी धन्यवाद,
16: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: विकास कुमार बोल रहा हूँ हिंसापुर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी अच्छे हैं।
0: सोनी जी बोल रहे हैं ना?
1: नहीं
0: नहीं क्या
1: सच है, भारती ही है।
0: आज तो आपका आवाज हम पहचान गए कि हाँ सोनी जी बोल रहे हैं।
1: नहीं हम भारती बोल रहे हैं, सोनी जी तो उधर है। आप
0: और बताइए क्या हाल चाल है मैडम?
1: मेरा बढ़िया है।
0: और बताइए खाना वाना हो गया?
1: हाँ हाँ खाना हो गया। तो आ गए दिल्ली?
0: हम भी आ गए अपना दिल्ली अपना। अब यहाँ आने के बाद से मैडम मन नहीं लगता है।
1: जी, घर परिवार को छोड़ के जाने के बाद कहाँ मन लगता है।
0: बहुत याद आता है।
1: जी
0: जब काम में लग जाएंगे ना तो सब भुला जाएगा। हाँ आप लोग से बात रहेगा ऐसा कोई ना।
1: हाँ चलिए बढ़िया है,
0: आप लोग से तो बात आते रहेंगे हम लोग।
1: आज गाना बता दीजिए।
0: आज ओम सिंह का गाना सुनवा दीजिएगा तो होते प्यार हमारे करना हम बताएंगे।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: जितना रेडियो सुनने वाला है सबको। यहाँ पर मेरा दो चार साला है उनको लिए।
1: चलिए बढ़िया है।
0: वो भी गया है मार्केट में, आज जा रहा था वो सब कंपनी, लेकिन मैं रोक दिया, बोले कि नहीं भाई फोन नहीं लगेगा, रुक जाना। तो गया मार्केट से कुछ लाने के लिए खाने के लिए।
1: जी अभी नाश्ता नहीं हुआ है? हेलो,
0: नहीं अभी तो नाश्ता वास्ता नहीं हुआ है अभी।
1: टाइम तो हो रहा है इतना ज्यादा, नाश्ता कर लेना चाहिए, अब तो भोजन का टाइम होने वाला है।
0: बात ये है ना, वैशाली जो वैशाली ट्रेन होता है ना, उस वैशाली ट्रेन से हम आए,
1: लेट से पहुँचे हैं।
0: तत्काल टिकट भी नहीं मिल रहा था तो हमको जर्नल में आना पड़ा। जर्नल में आने के बाद से जानते हैं कितना मुसीबत आ जाता है मैडम, बहुत ज्यादा मुसीबत झेलना पड़ता
1: है।
0: इंसान दुखे में जाता है परदेश।
1: चलिए कोई नहीं, ठीक है फिर।
0: चलिए और सब बढ़िया है ना मैडम?
1: हाँ हाँ बढ़िया है। चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके मैडम, नमस्ते।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल।
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903369015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: सलाम अलैकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 92.4 एफएम में।
14: जी मैम, मुझे गाना
13: बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
14: मुझे गाना सुनना है घर राजा परदेसी तेरे दीप जलाएंगे, ये वाला गाना।
13: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
14: जी, सबसे पहले आपको मासूम कौशर जुनेद अमरान भाई अरमान भाई जगदीप भाई आयुष भाई लक्की भाई समीर भाई रीना जी गिरिजी हिना जी हिना जी सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
13: सर तो अपना नाम बता दीजिए।
14: जी मैं गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से बोल रहा हूँ। पहले कॉल लगाए थे मैम, कट गया।
13: अच्छा,
14: बीजी बता रहा है, आधा घंटा हो गया लगाते हुए। लग तो जाता है लेकिन थोड़ा सा आदमी परेशानी में रहता है, तो गाना सुनना पड़ता है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। एक आदमी नहीं ना लगाने वाला, बहुत सारी दुनिया के लोग है लगाने वाले।
13: जी
14: आप कैसी हैं मैम?
13: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
14: हम भी सही हैं। और उधर कैसे मौसम?
13: अभी तो फिलहाल मौसम ठीक है, बारिश हुआ है आज ना इसीलिए।
14: जी हमारे तरफ तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, अभी हल्का धूप हुआ है, रिमझिम बरस रहा है अभी हल्का हल्का।
13: चलिए सब तो और बढ़िया है।
14: और सब बढ़िया है। चलिए ठीक,
13: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 92.4।

0: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी शुक्रिया।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: अभी घर ही में है।
1: अच्छा, नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ जी हो गया है।
1: चलिए बढ़िया है
0: जी।
1: और सबको घर में कैसे हैं?
0: जी सभी अच्छे हैं।
1: चलिए तो फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप?
0: फिल्म है द ट्रेन और गीत के बोल है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: श्री पाल गोयल जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, रोशन देवांगन जी हैं और तमाम साथी।
1: फिर चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: नमस्ते मैडम,
14: क्या हाल चाल है आपका?
13: बढ़िया है मैडम जी, तो बारिश हुई है कल हमारे उधर।
14: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। आज मौसम ठीक है?
13: मौसम ठीक है, ठंडा मौसम है। बिहार का कैसा मौसम है, उधर हुई क्या बारिश?
14: हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले हल्का हल्का बारिश हुआ है
13: जी,
14: तो मौसम ठीक है।
13: ठीक है मौसम आपके उधर का भी? अभी तो मैंने लगाया था फोन, बुधवार को लगाया था तो आज लगाया है सोमवार को आज।
14: चलिए कोई नहीं, किसी दिन तो लगाना
13: पड़ता है, अगर जाते एक आता हो गया तो लगाया।
14: अच्छा चलिए कोई नहीं, आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा, सुना दिया जाएगा।
13: आज गाना सुना है अमित संग्राम फिल्म का।
14: कौन सा गाना?
13: ये है ना कविता, किसने मूर्ति और कुमार सानू की आवाज में मैडम जी, भीगी हुई है रात मगर जल रही थी वाला।
14: अच्छा,
13: और क्या गा के बताऊंगा?
14: गा दीजिए।
13: भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, होने लगी बरसात मगर जल रही वाला है।
14: अच्छा जी चलिए,
13: और का अजय देवगन का।
14: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
13: डेडिकेट है ना, हमारे दोस्त है, डेडिकेट है उनके लिए। नाम लेता हूँ अभी, मांगीलाल जी है और सुनील साहू जी है, मकसूदगढ़ से ज्योति साहू जी है, हरिओम जी है, इनके लिए डेडिकेट और आपके लिए भी है।
14: फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: कैसी हैं मैम?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और बताइए क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, क्यों बैठे हैं?
1: अच्छा, तुम्हारा नाश्ता पानी हो गया?
0: हाँ नाश्ता पानी हो गया है। आपका हो गया?
1: मेरा भी हो गया है। चलिए बढ़िया है, नाश्ता करके थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए। बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना नहीं है, छाया है कोहरा कहाँ जाएंगे, बहने दे पानी डूब जाएंगे, वही सॉन्ग सुनना है।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: आपको और शायद लिसनर को।
1: ओके चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: ठीक।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 8570-32042 पे।
15: नमः शिवाय।
16: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
15: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
16: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
15: तीसरा रूट

0: थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM।
6: नमस्कार
5: नमस्कार।
6: कॉल हो गया, गाना भी नहीं सुने, हमारा मोबाइल का रिचार्ज भी खत्म हो गया।
5: अच्छा,
6: गाना बताए आप, आपको रिचार्ज खत्म हो गया, गाना नहीं सुन पाए, आज गाना हमारा सुनवा दीजिए।
5: नाम बता दीजिए पहले अपना।
6: परमात्मा महतो।
5: अच्छा,
6: मठिया से बोल रहे हैं।
5: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
6: गाना
5: कौन सा सॉन्ग
6: बढ़िया, अपना पसंद का बजा देना।
5: आप अपनी पसंद नहीं बताइएगा।
6: नहीं, आपका ही पसंद बजेगा। आज रिचार्ज करवाए हैं तो अभी लगाएंगे, आज लगाते हैं तो रिचार्ज हो गया है। आज गाना 5 बजे सुनेंगे। आज पहले मेरा गाना बताइए क्योंकि मैं सुना नहीं है वो गाना, पहले जो बोला था।
5: अच्छा,
6: बजवा दीजिए।
5: जी जी, पूरा कोशिश करेंगे।
6: कोशिश करके बजाए क्योंकि गाना में सुनने को नहीं मिला है।
5: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 नमस्ते जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: जी बोलिए।
0: पीछे बहुत शोर हो रहा है,
1: टीवी चल रहा है ना,
0: थोड़ा सा बंद कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है ना, उसमें आवाज होता है तो अच्छा नहीं लगता।
1: ठीक है, साइड निकल गया। मैं बोल रहा हूँ जी, मैं गोपालगंज एजेंसी में काम करता हूँ, गोपाल मोटर्स में।
0: अच्छा,
1: 10:30 वहाँ तो प्रचार भी आता है मोबाइल में। आता है ना रेडियो में?
0: हाँ हाँ आता है।
1: और बोल रहा हूँ जी, गाना सुना है मैम, अपने माँ बाप का दिल न दुखा, दिल न दुखा, यही गाना सुना
0: है। ओके, और सॉन्ग के लिए डेडिकेट भी है।
1: माँ है वो प्रकाश है, शिवानी है, सीमा है, और मेरे पापा श्री कृष्णा शर्मा नाम है उनका, वो है। हम अपने परिवारों के साथ सुनना है।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Excuse me, boss. You have a text message.
1: आपसे जुड़ रही हूँ और मेरे गाने का बोल है, जीने ना देगी ये जुदाई यारा। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सविया फील्ड गोपालगंज से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ। और बढ़ते हैं आगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रंजन जी के गाने के साथ। रेडियो रेम छिम 90.4 FM पे एंजॉय करते हैं हम सभी।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
7: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी रेखा जी की फरमाइश पे, दर्द भरा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ इनके तरफ से लिखा गया है कि धन्यवाद सोनू जी, मन खुश हो गया गाना सुनकर। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए, और ऐसे कार्यक्रम से जुड़ते रहिएगा और बने रहे हमारे साथ फिलहाल, और आगे भी गाने के साथ इंजॉय करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि लोहा फिल्म का गाना पतली कमर लंबे बाल, सुरेश शाह जी तिरबिरवा से जुड़े हैं, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है राणा प्रताप, आकांक्षा यादव, आकृति, तो आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बन रहे हमारे साथ अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से गाने की फरमाइश करते हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, बिल्कुल सुनाएंगे फिलहाल, आप लोग बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मैं विजय कुमार सिंह भीतबिरवा से, फिल्म अर्जुन पंडित का आश्रम, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज, हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं, मैं राजनंदनी फ्रॉम गोपालगंज से, और सॉन्ग नेम दिल चाहते हो कि जान चाहते हो, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बने रहे हमारे साथ, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और हाँ, यदि ये पुराने गाने होंगे तो ही गाने को प्ले करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप पहले गाने को स्पष्ट कर ले, फिर यदि गाने चेंज करना चाहती हैं तो कर दें, या समय बीत जाएंगे तो गाने भी नहीं प्ले हो पाएंगे और समय की समाप्ति भी हो जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, तो अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं कमलेश जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है शाम है धुआं धुआं, दिल जले मूवी से, तो चलिए सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो 94.4 FM पर।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

कमाल के शौक सुन रहे हैं आप सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे दिल जले मूवी से। और इस गाने का फरमाइश करने वाले शबिया फील्ड गोपालगंज से हैं कमलेश जी। आगे कई सारे मैसेज पहुंचे हुए हमारे श्रोतागण की और उनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय नमस्ते सुनो भाई आप कैसे हैं? तो बिल्कुल बढ़िया तो नहीं लेकिन ठीक ठाक हैं, और थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो गई है और बारिश का थोड़ा असर हो गया है। और इस मैसेज को करती हैं नीतू पिपराही से, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सॉन्ग नेम सी से की उम्र प्यार की, बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं राजनंदिनी, तो बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश से तिरबिरवा से पहुंचा हुआ है, और गाने का बोल दिया गया है पतली कमर लंबी बाल लोहा फिल्म से। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले सुरेश शाह जी हैं, तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मैं विजय कुमार सिंह मिथबेरवा से, तो बिल्कुल आपकी गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और बन रहा है हमारा साथ फिलहाल। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो सर जी कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी रेडियो सुनने वालों को नमस्कार कहिएगा। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। रोशनी घर धतीउना से जुड़ी हैं, बन रहे हमारे साथ। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं सुरेश शाह जी के और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी।

काफी प्यारा शॉट। रेडियो रामचंद्र 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं और इस समय जो है समाप्ति से कुछ आगे निकल रहे हैं, तो अंतिम गाने प्ले करेंगे और अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय जो है निकलने के बाद से कुछ कर नहीं पाते हैं। और हमारे समय जो है निर्धारित है 9:15 या 20 मिनट से 10:15 या 20 मिनट के बीच ही, इसमें मैं कार्यक्रम जो करना है वो करना है और आगे इजाज़त नहीं है। तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं और अंतिम गाने हम प्ले करते हैं राणा प्रताप जी की, और उनके तरफ से गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है। गाने का बोल देते हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। चलिए आप इंजॉय करें पहली बार इस कार्यक्रम और रेडियो रिमझिम से जुड़े, इसके लिए धन्यवाद है। आप गाने के साथ इंजॉय करें और फिर कल मुलाकात होगी। सुनते रहें आप सब रेडियो रामचंद्र 90.4 FM, जो हमेशा कहते हैं सुना दिल से। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम आपके अपना कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस को, और मैं हूं आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी आप सभी के बीच उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। स्टूडियो घड़ी में 12:03 हो चुकी है और अभी से 4 तक मैं आप सभी के साथ आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे यहाँ जुड़ सकते हैं, अपनी गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527881 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए 72776 पे और जुड़ जाइए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बिना देरी किए आज की शो की आगाज करेंगे। जब तक आपकी मैसेज पहुंचती है तब तक हम रेडियो रिमझिम पे एक प्यारा सा गाना इंजॉय करते हैं। और आप सब बताइए कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, आप सभी के पास ऐप कैसा चल रहा है और आपके उधर का मौसम का हालचाल कैसा है, जरूर बताइए। इंजॉय करिए इस गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 12:09 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं, काफ़ी सारे हमारे लिसनर जुड़ चुके हैं, और इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेज पहुँचे हुए हैं। तो चलिए पहले व्हाट्सएप मैसेज शामिल करते हैं, और क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे मैसेज है। आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ शो से, आपके बहुत बहुत स्वागत है, नाम पता जरूर मेंशन करिए। श्री राम जी जुड़ चुके हैं सासाराम टू दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इरशाद मास्टर जी रोशन टेलर ग्राम धनाव से लिख रहे हैं कि आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार जी हैं बालाघाट एमपी से, बहुत बहुत स्वागत है, फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। निर्मला कुमारी जी हैं जादवपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुस्तफ़ा सऊदी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लुकमान जी है अयोध्या से लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मनीष जाग जी हैं फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, और लिख रहे हैं कि ऐप भी बढ़िया चल रहा है, आपका आवाज़ भी बढ़िया आ रहा है, और मेरे तरफ बहुत तेज़ धूप हुआ है। ओहो, तो धूप हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ हुआ है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग नहीं, मंसारी जामतारा से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। नौशाद अली जी जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत। संजय यादव जी दुबई से लिख रहे हैं, क्या हाल है मैम? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति रैदास जी है लिख रहे हैं कि सुपर ओपनिंग सॉन्ग, करती हूँ प्यार सिर्फ संडे को, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रीति जी। और आगे यहाँ और भी मैसेज है, विद्या निवास जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। बबलू जसवाल जी है पूर्णिया बिहार से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और लिख रहे हैं कि हमारी भी फरमाइश है, बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करेंगे। रोहित जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से। और मौसम की बात करें तो मैडम जी यहाँ तो कल से बारिश हो रहा है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और गाना सुनना है, लिंक भेज रहा हूँ, बिल्कुल भेजिए लिंक, गाना सुनना है तो। और निकलने का नाम नहीं ले रहा तो बारिश को एंजॉय करिए। दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मनीष पांडे जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइश है बिल्कुल प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ पहली फरमाइश प्ले करने जा रहे हैं, फाजिल नगर कुशीनगर से फरमाइश पहुँचा हुआ है मनीष रजाक जी का। तो चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर, और काफ़ी बढ़िया गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। एंजॉय करिए आप सभी।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी मनीष तुजाक जी की तरफ से, लिख रहे गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद है सोनी जी। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरे तरफ भैया को धन्यवाद दीजिएगा गाना बजाने के लिए, बहुत दिल कर रहा है और सैड सॉन्ग सुनने के लिए हो। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौहान से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे कि जिंदगी में कभी कोई आया न रब्बा सुनवा दीजिए। और मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जी आपका भी। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ बबलू जायसवाल जी हैं, लिख रहे हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था ये जी। हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। थोड़ा वेट करिए, फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून, और मैं भी जुड़ गया हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? नाम पता मेंशन करिए। मिस्टर कुमार जी है मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, खलनायक मूवी से ऐसी तेरी याद आती है। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, नाम पता मेंशन करिए कि आप कौन हैं और कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, बालाघाट एमपी से जुड़े हुए हैं राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपकी आने की फरमाइश है तो प्ले करेंगे, लिख रहे हैं कि वाह मैडम जी धमाल मचा दिया। बिल्कुल, और आपकी फरमाइश जो है एक सप्ताह आपका हो भी चुका है और प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, श्री राम जी हैं सासाराम टू दिल्ली से, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो 90.4 FM पर।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफी सारे मैसेज है। राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि प्रणाम बटे सोनी मैडम जी, हम आगल बानी हमरो हाजिर लगा दे, बिल्कुल लगा दे बानी हाजिरी राउर। अनिल जी जुड़ चुके हैं छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी, आप ठीक हैं ना? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और लिख रहे हैं कि मैं भी सो से जुड़ गया हूँ और कभी जी भर के बरसना, कभी बूंद बूंद के लिए तरसना। एक बारिश तेरी आते मेरे यार जैसी क्यों है, ओहो तेरी आदतें मेरे यार जैसी क्यों है। और मैसेज किया अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि दिल तोटे तोटे हो गया, वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं मनीष शुजाक फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। एक और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है तो नाम ज़रूर मेंशन करिए आप कौन है कहाँ से। और सिर्फ मोहम्मद दिखा रहा है प्रोफाइल पे नाम, तो अपना नाम पता जरूर मेंशन करिए। आपकी फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास पहुँचा हुआ है मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से गाने की फरमाइश है। और लिख रहे हैं कि गाना प्ले कर दीजिए, बिल्कुल प्ले कर दीजिए, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

और यहाँ मनीष पांडे जी की तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि सन्यासी बाबा जी को मेरे तरफ से हर हर महादेव बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, और क्या बात है, काफी खूबसूरत गाने के साथ जुड़े। और इंद्रदील जी हैं, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया गाना है और मन खुश हो गया गाना सुन के एकदम से। और यहाँ मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं कररिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज शामिल करेंगे, और काफी खूबसूरत गाने के साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी गाने की फरमाइश के लिए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिखा है कि नमस्कार जी, हम भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम पता जरूर मेंशन करिए। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूँ, उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर आस पास हूँ, पलकों को बंद कर कर जब भी दिल में देखोगे मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात है। और दिनेश मिश्रा जी है दिल्ली से, काफी खूबसूरत लाइन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज है, संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं बनवाल, संतोष कुमार बनवाल जी है फ्रॉम ओमान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और काफी दिन बाद शो में आए। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि जी मैम मेरा भी फरमाइश है आज, और बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ, लिख रहे हैं कि जो भी भाई की ये फरमाइश थे आज गर्दा उड़ा दिए। और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार जी बालाघाट एमपी से, जी हाँ बिल्कुल। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बारिश में लड़कियां नहाकर जुलाई

बारिश में लड़कियां नहाकर जुलाई, इसलिए इस महीने का नाम पड़ा जुलाई। हो और मैसेज के साथ है दिनेश मिश्रा जी एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा नाम मुकेश है। ओहो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी, और अयोध्या से जुड़े हुए हैं मुकेश जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ आगे बढ़ेंगे और यहाँ प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारे उद्घोषक महोदय जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और काफी दिन बाद शो में आए, कहाँ थे इतने दिनों से जरूर बताइए और क्या हाल चाल है बताइए। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी है, जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश, और उनको सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर, और जिंदगी बीच कोई कभी आए न रब्बा, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और कॉल वाले हमारे लिसनर कहाँ है जरूर बताइए।

और यहाँ मनीष पांडे जी हैं, लिख रहे हैं कि सभी दोस्तों को मेरा गाना पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ बिल्कुल पसंद आया सभी को, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, अयोध्या से मुकेश जी हैं।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और 12:45 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98 527 88 291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर कॉल करिए 72 77 16 65 96 पे। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ रुक करेंगे, मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो जी, मैं भी झारखंड से बोल रहा हूँ, आपको भी गाना सुनना है सुना दीजिए, और तेरे नाम मूवी का टाइटल सॉन्ग। और अभी अभी ये गाना हम लेके हैं एक, और ये गाने की फरमाइश है सोमनाथ दत्ता जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाना अगर चेंज कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी अभी ये गाना प्ले हो चुका है, तो आप दूसरे गाने की फरमाइश कर सकते हैं। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा नाम साजन सिंह है, गांव कुबरही बरचाप से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, लिख रहे हैं कि मेरा भी फरमाइश है गदर मूवी का सॉन्ग उड़ जा काले कावा, और ये गाना मेरे गांव के लोगों को सुनवाना चाहता हूँ और आपको भी। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, थोड़ा वेट करिए, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, और परदेसी परदेसी जाना नहीं गाने की फरमाइश के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी। तो एंजॉय करिए अपने गाने को, आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे सन्यासी रंजन बाबा जी की फरमाइश थी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सन्यासी बाबा के गाना भी ला जो आप और मस्त झकास है। और मैसेज करने वाले हैं मनीष पांडे जी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि परदेसी मेरे यारा लौट के आना, वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। और लिखते हैं कि कांच का तोहफा ना देना कभी, कांच का तोहफा ना देना कभी, रूठ कर लोग तोड़ दिया करते हैं। जो बहुत अच्छे हो उनसे प्यार मत करना, अक्सर अच्छे लोग ही दिल तोड़ दिया करते हैं। क्या बात है। और आगे यहाँ नईम जी हैं जान तारा से, तो हम आपको बता दें कि आपके गाने की फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे और अगली फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और मैसेज एक और यहाँ लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपको गाना बजाने के लिए मेरे तरफ से। आज मनीष पांडे जी को भी हर हर महादेव बोल दीजिएगा। अभी बिल्कुल बोल दिए हैं और बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सुपर हिट सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं इंद्रदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, सोनी जी कॉल बंद बता रहा है, तो कॉल तो चालू है, यहाँ सिम पे कॉल भी आ रहा है लेकिन समय पे कॉल नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ कि क्या दिक्कत है। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सैड सॉन्ग ही प्ले कर दीजिए ना, और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है सैड सॉन्ग, तो कौन सा गाना सुनना है आप ज़रूर बताइए, हम प्ले करेंगे। और पाजी यूपी चौवन से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। यहाँ अयोध्या से लुकमान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, हेलो मैम हम भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और रंजन कुमार जी तमकुही रोड कुशनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी, बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश प्ले करेंगे, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। लुधियाना पंजाब से जीना है तो हंस के जियो, प्रमुख जी की तरफ से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84-710-30-92 या 90-65-65-750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: ठक ठक।
6: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
8: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और देखते देखते एक घंटा निकल चुका है, 1:02 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से तो जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैसेज काफ़ी सारे पहुँचे हुए हैं, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और लुकमान जी हैं अयोध्या से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाली हैं इंद्रदेव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज एंट्री किए हैं सो में प्रमुख जी फरमाइश अच्छा है, फैंटेस्टिक सॉन्ग, जिनकी जीना है तो हंस के जियो, प्रमुख जी की फरमाइश चल रही है अच्छी है। और कहाँ थे लगभग एक वीक से प्रमुख जी नहीं आए हैं और आज एंट्री किए हैं, तो अपने काम में बिजी थे, लिख रहे हैं कि लिखे हुए हैं मैसेज में कि थोड़ा काम था जहाँ कि वो बिजी थे और आज भी बिजी हैं, लेकिन समय निकाल के शो से जुड़े। और इसके लिए आप प्रमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाले और ऐसे भी निकालते रहिए, बिजी तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ आरजे वंशिका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, लिख रहे हैं हम भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, विद्या निवास जी जुड़ चुके हैं मऊ जिला से, लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम हम भी सुन रहे हैं, मेरा भी आज लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है। विमल कुमारी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं कि रिश्ते की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जी हाँ बिल्कुल, और सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़ी। और यहाँ मुकेश जी हैं, लिख रहे हैं कि मेरा गाना है बजा दीजिए खलनायक मूवी से, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल मेरा ध्यान सभी के ऊपर है। और साजन सिंह जी जुड़े हुए हैं गाने की फरमाइश के साथ, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, तो पहली फरमाइश कॉल का और फिर उसके बाद हम आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार
1: मैम, कब से घंटी बजे तरह में उठाते नहीं कि किसी आयल बने क्या?
0: ना जी, हम काहे किसी आए बताई, अब घंटी बजे तरह ला टाइम में ऐड चलत रहे, गाना चलत रहे।
1: एक बजे मोबाइल चालू भइल
0: ह ना, चालू पहले ही से रहे, नेटवर्क ना रहे। चालू रहे,
1: बताई उन्हें पानी उन्हें भइल ह?
0: हाँ भइल हुए काल, आज तो
1: ना भइल ह,
0: ना आज तो धूप निकलल बा।
1: सब बाजे लोग अच्छा बानी लो?
0: जी जी, सब कोई बढ़िया बा, सब कोई अपन अपन काम में लगल बाटे।
1: अच्छा तो गाना एक सुना दी?
0: बिल्कुल सुनाए, बताई नाम गाना के।
1: गाना के नाम बा पतली कमर लंबे बाल है रे उमर चुलता।
0: काफी बढ़िया गाने के फरमाइश, और नाम पता भी बता दी श्रोता लोग के।
1: नाम बाबे हमार पप्पू कुमार, थोड़ा रौना पढ़रिया से। और श्रोता से कहें कि थोड़ा गाना अच्छा लगता तो तनी फीडबैक दिहल करी लोगी।
0: जी जी बिल्कुल,
1: फीडबैक में कंजूसी होता
0: तबे तो पता चली कि हाँ के केस जुड़ल बाटे अभी लाइव बाटे।
1: जी जी जी
0: जी, तो गाना प्ले कर दिले बानी राउर।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करनी, एंजॉय करी गाना के।

और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि गाने के साथ गुनगुनाया करिए, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी लगती है। और मैसेज के साथ है विदा निवास जी मऊ जिला से, बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े वॉइस के माध्यम से फरमाइश है, तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है, वेट करिए। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बारिश और मोहब्बत दोनों ही यादगार होती है, बारिश में जिसमें भीगता और मोहब्बत में आंखें। जी हाँ बिल्कुल, और अनिल जी है छोटपुर से, बहुत बहुत

हाँ बिल्कुल। अरे कह रहे हैं मैसेज लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा गाना भी बजा दीजिए, 4 महीना बरखा के दिन। बिल्कुल गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग सोनी जी, इरशाद मास्टर जी है दनाव से। अरे कह रहे हैं मैसेज लिख रहे हैं कि हो सुपर सॉन्ग।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे पप्पू कुमार ठाकुर की फरमाइश थी पुराना बढ़िया से और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है और उमा शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत। लिख रहे हैं क्या बात है सोनी जी, नमस्कार और नाइस सुपर सॉन्ग। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं सनम और गाने की फरमाइश है वफा का कैसा सिला दिया, गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, नाम है इनका नहीं मंशारी जी जाम तारा से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की कोशिश है, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ ठीक है कि मेरा गांव है सिधौलिया सिवान और रितेश कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि 19 केजी वाला कमर्शियल सिलेंडर का जो रेट है वो कम हो चुका है, चलिए और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिख रहे हैं कि 183 रुपया 5 पैसा सस्ता हो चुका है, ओहो, और उसमें गिरावट हुआ है। और ये न्यूज़ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश जी, बने रहिए साथ में। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा गाना नहीं बजेगा क्या, बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा, फिलहाल थोड़ा वेट करिए और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ हाँ एक और मैसेज अभी अभी दस्तक दिए हैं, राजू सोनी जी जुड़ चुके हैं हरपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि गाना की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की कोशिश है, थोड़ा वेट करिए। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं और हिंदी गाने की फरमाइश के साथ संतोष कुमार बनवाल जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और फरमाइश बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है, फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे उससे पहले एक और मैसेज लिख रहे हैं कि वाह मैडम जी ऐसे ही गाते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और प्रीति रदास जी हैं लकड़ी दरगाह जी ठीक सिवान से। और यहाँ खलनायक मूवी का अगला फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, फरमाइश करने वाले हैं मुकेश जी अयोध्या से, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 1:19 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं, फरमाइश भी है, तो चलिए बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और यहाँ सुजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, राधे राधे। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है फिलहाल, या अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, गद्दर फिल्म का गाना सुनना है, ऊर्जा काले कावा। और साजन सिंह जी जुड़े हुए हैं कुबरही बरचाप से, तो चलिए एंजॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे प्ले कर दिया आपके गाने को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे शाजन सिंह जी, और इनके तरफ से मैसेज है लिख रहे हैं कि सॉन्ग प्ले करने के लिए थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा लगा होगा। जी हाँ बिल्कुल अच्छा लगा होगा। यहाँ सावन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि ऐसे ही गाते रहिए मैडम जी बिल्कुल। और गाने की फरमाइश है पगली नहीं तुम पागल हो, गाने की फरमाइश के साथ है, बिल्कुल आपकी फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका शो में जुड़े। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, उससे पहले यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए पहले बात करते हैं कौन है, कहाँ से सुनते हैं गाने की फरमाइश को।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: जी कोई क्या समाचार?
0: बिल्कुल बढ़िया रहो, बताए की संबानी।
1: समाचार तो बढ़िया, बहुत धूप पहले कड़ा है,
0: बारिश ना भले अभी
1: ना हमने की हम बारिश कहाँ भाई
0: ना, तो कि बादल अपना रास्ता मोड़ ले लेवा। तो गाना कौन सुना दी आज रोवा के?
1: गाना परदेश मूवी के निकाल दी, नहीं होना था नहीं होना था हो गया है मुझे प्यार। और रोवा को सुनाए के बाद जितना रेडियो रेंज में सब कुछ सुना था, सब कुछ सुनी हमने के तेजा शाम तक प्रोग्राम में नवे बजे से सुनत रही ना।
0: जी जी
1: जोड़ी चाहे ना जोड़ी रोज हमारा सुनना बा, काम में रहब तो सुनते रहो।
0: रहो कामो तो वैसे ही बाटे।
1: हाँ हाँ मान ली के चढ़ गई तो एक बात बा ना, तो अपन आई बड़न आजम बड़न हमार पोता अकलीम बड़न देखिए आइसक्रीम भी चाहिए बा कहते नहीं आइसक्रीम तो रखे ना,
0: तब दूसर काम का बा रहो। नाती पोता बात अब मंगबे करी।
1: हाँ क्या करो दिन बंद अच्छे रह रही है।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे बनी राउर।
1: चलिए ठीक
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के नहीं।

अरे आप पाजी यूपी चौवन से हैं, लिख रहे हैं कि वाओ क्या सॉन्ग है मैम, और मेरा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपका गाना प्ले करेंगे। और यहाँ आप पे भी ध्यान है, लिख रहे हैं कि मेरे पे भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल सभी पे ध्यान है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी आपसे एक क्वेश्चन है। बिल्कुल क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम हमारा बारी आएगा, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी भी बारी आएगी। और रोहित जी हैं देहरादून से, लिख रहे हैं कि आपका काम हो गया वो भी निशुल्क में, बादल वाला। ओह जी हाँ, बिल्कुल हो गया है। और हेलो माय चॉइस कल का सुनिएगा, वहाँ भी पता चलेगा कि आपका काम जो हुआ है वो हो गया है। अनिल जी हैं छोटपुर से। और आगे यहाँ बहुत सारा मैसेज है, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंजॉय करिए फिलहाल इर्शाद जी की फरमाइश पे खूबसूरत सा गाना।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे इशाद मास्टर जी की फरमाइश थी, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, उससे पहले मैसेज है मनी यादव जुड़े हुए हैं काकरकुंड से, लिखते हैं क्या हाल है मैम। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे लिखते हैं कि सोचा ना था हाल दिल इस कदर होगा, इसमें टूट कर हाल मेरा जिगर होगा और घायल मेरा जिगर होगा। उसे मीठी सी मुस्कान की हसरत थी, मालूम न था वफा के नाम कोई खंजर होगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमे जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि इस गाने में सबसे इमोशनल लाइन वापस कर गई मैम। और मैसेज करने वाले हैं बबलू जयसवाल जी पूर्णिया बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ इशाद जी की तरफ से भी मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एक और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: हेलो, मैं भारती बोल रही हूँ और आज मुझे भी गाना सुनने का मन कर रहा था, क्योंकि सुबह से गाने मेरे जहन में आ रहे थे, तो मैं सोची कि आज मैं भी फरमाइश कर लूँ। तो आज सभी के बीच मैं भी जुड़ चुकी हूँ अपनी फरमाइश के साथ। गाने के बोल हैं, तू जो आए ज़िंदगी में बात बन गई। तो आप सभी बताइए कि ये गाना कैसा लगा, और ये गाना सभी लिसनर को डेडिकेट है। और सोनी जी से उम्मीद है कि आप मेरा गाना सुनवा दीजिएगा।
0: बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश है प्ले कर दी है, और आप भी बताइए कि आपको गाना कैसा लगा सुन के। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, एंजॉय करिए अपने गाने को और सभी लिसनर एंजॉय करिए आरजे भारती जी की फरमाइश है। और बताइए कि कैसा लगा, वो वेट कर रही हैं।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज।

0: क्या, अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97714861. 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासामूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज. CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस.
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है.
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासामूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308.
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान. पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज. ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर. कॉल 9170856587.
3: ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में. और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे. मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो, हाय, नमस्ते, मैं अनिश यादव, विलेज दुमरा, यदवंशी टोला, सिवान, बिहार से, और अभी मैं पटना में हूँ, सुन रहा हूँ पटना से रेडियो रिमझिम को. बहुत बहुत स्वागत है आपका. लिख रहे हैं कि यहाँ जस्ट बारिश हो रहा है और वहाँ का मौसम कैसा है. तो हमारे यहाँ भी काफ़ी तेज़ धूप निकला हुआ है. और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है. और यहाँ संजय यादव जी हैं दुबई से, लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए. और आगे यहाँ मैसेज है, ठीक है, कि गाना का नाम अवध में प्रोटोकॉल, स्वर राग पंडित का. बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है. धर्मेंद्र कुमार जी सोलन जिला अयोध्या से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और ये गाना कैसा है एक बार कंफर्म करिए, क्योंकि ये गाना हम सुने नहीं हैं. अगर सही होगा तभी रेडियो पे प्ले करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि रघुआ हमारा से नाराज बानी का. बिल्कुल नाराज नहीं की हम, क्यों से नाराज नहीं की. और लुकमान जी हैं अयोध्या से, और ये बात ऐसा कहे बोला तो नहीं कि हम रघुआ से नाराज बानी, ऐसा कहे लागल जरूर बताएं. और आगे यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि भारती जी हम सभी के बीच में जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से. और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैम हमरो गाना बटे ना बाजी का. बिल्कुल बाजी. और निर्मला कुमारी हैं जादवपुर से, थोड़ा वेट करिए और आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे. नेक्स्ट रहेगा आपकी फरमाइश. फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे. और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो भी अयोध्या से ही पहुँचा हुआ है. और फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका मोहम्मद सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, और गाना सुनना है इनको मितवा भूल ना जाला. तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, मितवा भूल ना जाना. एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर.

रहे हैं मैम, बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं हम किसी का भी मैसेज, और आप लोग मैसेज करते हैं और 5 मिनट के अंदर डिलीट कर देते हैं मैसेज, फिर मैं क्या करूँ इसमें, मेरी क्या गलती है। और आप लोग साथ में नाम पता बिल्कुल मेंशन नहीं करते हैं, तो ये गलती आप लोगों की है, और मैसेज भी डिलीट करना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा वेट करिए, आप अकेले नहीं है, काफ़ी सारे लिसनर हैं और सभी का मैसेज शामिल करना होता है, सभी की फरमाइशें है, तो थोड़ा आप लोग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक समय में अगर 4 गाने की फरमाइश है तो चारों हम नहीं प्ले कर सकते हैं, उसमें 4 बार प्ले करने के लिए समय तो लगेगा, तो थोड़ा सा इस बात को समझिए आप लोग और मैसेज

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी अयोध्या से और फरमाइश करने वाले थे। उससे पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मुकेश जी हैं अयोध्या से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, उससे पहले यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और मैसेजों को शामिल करना अभी रोकेंगे। फिलहाल अगली फरमाइश जो हमारे पास देहरादून से पहुँचा हुआ है रोहित जी का, और उनको सुनना है गाना लगी आज सावन की फिर एक झड़ी है। तो इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

अरे हाँ, लुकमान जी है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना भी सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने सुनवा देते, लेकिन अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है, तो थोड़ा वेट करिए। आपका एक सप्ताह जो है सोमवार को होगा, तो हम आपके गाने की फरमाइश जो है सोमवार

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, 1:57 हो चुके स्टूडियो घड़ी में। और गाने की फरमाइश की बात करें तो काफ़ी सारे फरमाइश है। और यहाँ नौशाद अली जी है मोतिहारी जिला से लिख रहे हैं कि मेरा गाना जो है पेंडिंग में डाल के रख दें मैडम जी। बिल्कुल नहीं, और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और अगली फरमाइश जो पहुँचा हुआ है उससे पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि खूबसूरत सॉन्ग सोनी जी, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। और मैसेज करने वाले हैं सुजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ अनिल जी रोहित जी की तरफ से भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि धन्यवाद सोनी मैडम जी गाना सुनाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज मेरी फरमाइश प्ले होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। रेडियो रिमझिम सुनने वाले जितने भी रेडियो श्रोता है वो फरमाइश किए गाने सुनते हैं और मस्त रहते हैं, लेकिन सोनी मैम प्रोग्राम चलाने के साथ साथ गाने का असली एंजॉय करती हैं, अपनी धुन में मस्त रहती हैं और यह बहुत ही अच्छी बात है। और लंच चंद लम्हों की ज़िंदगी है तो क्यों ना हंसते हंसते खेलते हुए बिताई जाए, यही बेहतर ज़िंदगी के लिए और हम सब के लिए। और धन्यवाद सभी को अच्छे अच्छे गाने फरमाइश करने के लिए। सोनी जी है सऊदी अरब से, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रेडियो रिमझिम को इतने गौर से सुनते हैं और सभी अब गाने को ऑब्जर्व करते हैं और इतने अच्छे फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम को। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है, अंसार आलम जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है निर्मला जी है जादवपुर से, तो एंजॉय करें अपने गाने को। और गाना सुनना है इनको विनय तिवारी की आवाज़ में, कर अपना प्यार कबो, तो एंजॉय करें अपने गाने को रेडियो रिमझिम पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश जादवपुर से थी निर्मला कुमारी जी के। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, गाने की फरमाइश, हर दिल में रब बसता है। और इस फरमाइश के साथ संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं ओमान से। तो इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070 32042।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और राजू सोनी जी हरपुर से लिख रहे हैं कि मेरा भी सॉन्ग है, प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, तो फिर समाचार के बाद प्ले कर देंगे। और यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े, नाम मेंशन नहीं है। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हर नज़र को एक नज़र की तलाश है, हर नज़र को एक नज़र की तलाश है, आपके चेहरे में कुछ तो खास है, आपसे मोहब्बत हम यूं ही नहीं कर बैठे, क्या करें हमारी पसंद ही कुछ खास है। और बस ऐसे ही मैसेज कर दिए हैं और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौवन से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फरमाइश है तो कोशिश है कि हम आपकी फरमाइश जो है प्ले कर सके। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अगर आपके यहाँ बारिश हो रहा है तो इधर भी भेज दीजिए, बहुत गर्मी है। फरीदाबाद हरियाणा से मैसेज पहुँचा हुआ है और शाहबुद्दीन अंसारी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और फरमाइश के साथ है, ठीक है कि सब कुछ ही वही नहीं मिल जाता जिंदगी में, कुछ चीजें मुस्कुरा कर छोड़ देनी होती है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है बालाघाट एमपी से राम कुमार जी के, और उनको सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, और गाना है ये जीवन जितनी बार मिले। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

हमारे यहाँ मैसेज पहुँच चुका है, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका मेरा गाना बजाने के लिए। और इसी गाने के बाद हम चलेंगे दोपहर समाचार की तरफ, फिर आप सभी से मुलाकात होगी दोपहर समाचार के बाद। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को, मिलते हैं आप सभी से दोपहर समाचार के बाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
4: Round of 16. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
6: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
7: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
8: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
5: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
8: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
5: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
9: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
5: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
9: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
5: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
10: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
11: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
12: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
5: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के

0: के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
8: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स दम

0: शानदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 5536 या 9956 5790।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
4: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 8570-3242 पे।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 2:45 हो चुके स्टूडियो घड़ी में और 4 तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ, या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम से भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 7277166696 पे। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास यहाँ पहुँचा हुआ है, उससे पहले एक मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरी हर दुआ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए है, तुम्हारी हर अदा मेरे दिल को चुभने के लिए, चुराने के लिए है, अब तो मेरी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार के लिए है। और मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी साखे खास से। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कोलकाता से संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनको सुनना है गाना मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं, इन्जॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी कोलकाता से संजय कुमार जी की। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ कृष्ण मोहन जी जुड़ चुके हैं सिफाया खास से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। नंद कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। विशाल जी जुड़ चुके हैं देवरिया से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है राजू सोनी जी का हरपुर से, उनको सुनना है गाना सातों फेरे के सातों वजन। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रमजम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी हरपुर से राजू सोनी जी की तरफ से, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू मेरा गाना सुनाने के लिए। और गाना कैसा लगा सोनी मैम? बिल्कुल बढ़िया लगा आपका गाना, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी। और यहाँ अनिल जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं एक बार फिर से जुड़ गया हूँ शो से, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ जम्मू से मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ जम्मू से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नाम बताइए अपना और कि कौन है आप। और सुजीत कुमार जी हैं, लिख रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आएगा सुजा सोनी जी, बिल्कुल आएगा आपका भी नंबर। एमडी महमूद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि भाई का सॉन्ग सुपर सॉन्ग। और अगली फरमाइश की तरफ रुक कर लेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, नई मंसारी है जाम तारा से, उनको सुनना है गाना हम तुम्हारे हैं सनम। तो इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। यहाँ 3:07 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और यहाँ राजकिशोर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैसेज पहुँच चुका है, लिख रहे हैं थैंक यू मेरा गाना बजाने के लिए। और संजय कुमार जी है कोलकाता से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुंचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहां से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: जी, अदिति बोल रहे
0: हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, कहां से बात कर रही हैं अदिति? जी
1: इतने दिन क्या?
0: अब इतना सारा लिसनर लोग वाणी सबकी आवाज़ याद रखल इतना आसान नहीं के, ऐसे भुलाइल नहीं की आवाज़ से, तो ऐसे लगा था कि बात कैले बनी लेकिन नाम ना ध्यान रहे। खाना हो गल बा जी, राहुल लंच भल की ना ही बताएं हो गल बा तो गाना कौन सुना दी बता दी हो?
1: कुछ ज्यादा के सुना दे, चाहे अपना रोता भी कागर के रोता भी। ये सुना दे, सबसे पहले रोता के सुना है, हम सुना मेरे फैमिली गाने दे रही को।
0: चले तो प्ले कर दे लेबानी गाना।
1: जी
0: जी सब जी जी सब बढ़िया बा।
1: चलो ठीक है, तुम काम बका।
0: चलिए तब गाना एंजॉय करी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के लिए।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे अंकुश राजा की आवाज़ में और गाने की फरमाइश पहुंची थी कॉल के माध्यम से। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मैसेज है और अली अख्तर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिखे हैं कि क्या बात है, काफ़ी बढ़िया सॉन्ग और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखे हैं वेरी नाइस सॉन्ग, राजकिशोर जी हैं देवघर झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी राजकिशोर जी। और लिख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा सोनी जी, बिल्कुल आ चुका है आपका नंबर, लिख रहे हैं गाने की फरमाइश से, ये कैसा नशा कैसा खुमार है। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और मैसेज करने वाले हैं सुजीत जी,
1: ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूँ, ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतजार में मका है कब्र जिसे लोग खुद बनाते हैं, मका है कब्र जिसे लोग खुद बनाते हैं, मैं अपने घर में हूं या मैं किसी मजार में हूं, दरे फसील खुला या पहाड़ सर से हटा, दरे फसील खुला या पहाड़ सर से हटा, मैं अब गिरी हुई गलियों के मर्गजार में, बस इतना होश है मुझको कि अजनबी है सब, बस इतना होश है मुझको कि अजनबी है सब, रुका हुआ हूं सफर में किसी दयार में, मैं हूं भी और नहीं भी,

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और सुजीत जी, आपको गाना कौन सा सुनना है, गाना बताइए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि पत्नी मायके से वापस आए तो पति दरवाज़ा खोलते हुए हंसने लगा। पत्नी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों क्यों हंस रहे हो? पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करना। और मैसेज के साथ है रोहित जी देहरादून से, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी श्रीमती जी ये ना सुन ले। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम आपसे मैम आपसे ज़रूर पूछता लेकिन गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। और क्या नहीं पूछ रहे हैं, और आप अपना नाम पता भी ज़रूर मेंशन करिए कि आप कौन हैं और कहाँ से, और ऐसा क्या पूछना था। खैर वो मना कर दी है तो मत पूछिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि तेरी याद आती है गाने की फरमाइश है। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को। और मैसेज करने वाले हैं सुजीत कुमार जी, और सुनते रहिए साथ में रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

अरे हाँ, मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम ऐप रुक रुक के चल रहा है क्यों। और ये मुझे भी कुछ देर के लिए लगा कि ऐसा हो रहा है कि ऐप रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है। और कल थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, शायद उसी की वजह से फिर हो रहा है ऐसा, तो मैं चेक करती हूँ। और यहाँ सुजीत कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सॉन्ग बजाने के लिए सोनी जी, इंजॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रूम से 90.4 एफएम पर। और जो लोग भी अभी सुन रहे हैं मेरे को और जिनकी भी गाने की फरमाइश अभी तक नहीं प्ले हुआ है, एक बार मैसेज करिए कि हमारा गाना अभी बाकी है।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे थे, सुजीत कुमार जी की फरमाइश थी। और यहाँ मैसेज है धर्मेंद्र कुमार शौल जिला अयोध्या से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी जो गाने की फरमाइश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धार्मिक जातिवाद गाना है, तो अगर आप अपने गाने की फरमाइश चेंज कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इनके साथ इनके दोस्त हैं जितेंद्र कुशवाहा जी, जो कि पहाड़पुर जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं, और अभी ये दोनों कोई कोल्हापुर महाराष्ट्र में सुन रहे हैं, महाराष्ट्र से सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में, और अगर गाने की फरमाइश चेंज कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ शानिया सैफी जुड़ चुकी है चखस्ता से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज ये लिख रहे हैं कि चुप रहते रहते वक्त गुजर जाएगा, मरने के बाद कौन किसी को नजर आएगा, जी लो मेरे साथ ये पल, ए मेरे माँ ए मेरे मैम, ना जाने कब ये चेहरा कफन में छुप जाएगा। और लिख रहे हैं कि शायरी ही पढ़ी है मैम, गाना तो प्ले करेंगी नहीं, ऐसा बात नहीं है, गाना तो प्ले कर ही रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौहान से, बहुत ही सैड शायरी है आपके तरफ से, लेकिन बहुत ही अच्छा शायरी है और गाने की फरमाइश है, तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करें अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना हम सभी सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे पाजी यूपी चौहान से। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है धर्मेंद्र कुमार जी की, जो कि है यूपी 42 से। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है। इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ इरशाद मास्टर जी हैं, लिख रहे हैं कि सोनी जी बहुत खूब गाना चल रहा है और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अभी हम बोले थे धर्मेंद्र जी कि आपकी गाना जो है धार्मिक है, लेकिन आप बोले कि ऐसा नहीं है और माफ़ करिएगा, हम अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है निजामुद्दीन जी जुड़े हुए हैं इनकी तरफ से, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे निजामुद्दीन जी, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू मेरा गाना बजाने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि राधे राधे जी, मैं देवराज कुमार रेशमनगर बगैया जिला से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं प्रोग्राम से हमें जुड़ गए हैं और सभी दोस्तों को नमस्ते बोलिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ सनिया सैफी जी है चकृष्णा से, लिख रहे हैं कि कैसे हैं आप सभी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है अमरजीत शुक्ला दुबई से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बाकी है। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, वॉइस पहुंचा हुआ है तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हेलो सोनी मैम, कैसी हैं? मैं अमरजीत शुक्ला दुबई से, मुझे गाना सुनना है प्यार बिना चैन कहाँ। मैं इस शो में पहली बार जुड़ रहा हूँ, मेरा भी गाना सुनवा दीजिए। और बताइए उधर बारिश हुई हो रहा है कि नहीं।

आपको गाना सुनना है अमरजीत जी प्यार बिना चैन का हर है, तो अगर अभी सुन रहे हैं तो फटाक से मैसेज करिए एकदम जल्दी से और बताइए कि आपको प्यार बिना चैन का हर है हिंदी सुनना है या भोजपुरी, क्योंकि अगर प्ले करने के बाद फिर आप बोलिएगा कि मैं तो हिंदी सुनना चाहता था, और यहाँ हिंदी भोजपुरी दोनों गाना है, तो आप कंफर्म करिए कि कौन सा गाना सुनना है, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि वाह भाई क्या फरमाइश है, मज़ा आ गया सॉन्ग सुन करके। और दीपक जी जुड़े हुए हैं जम्मू से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है राजकिशोर जी का झारखंड से, और इनको सुनना है गाना ये।

किशोर जी की फरमाइश अभी हम सभी इंजॉय कर रहे हैं, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश है किशोर कुमार की आवाज में। ये खूबसूरत सा गाना आप सभी सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम से आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी खूबसूरत गाना किशोर कुमार जी की आवाज में एंजॉय किया हम सभी, जो कि फरमाइश पहुंचा था राज किशोर जी की तरफ से। और यहाँ सानिया सफी जी हैचे खसना से लिख रहे हैं कि गाना सिर्फ चाय के लिए बना है। जी हाँ बिल्कुल। और आगे यहाँ विष्णु कुमार जी जुड़ चुके हैं वीके फास्ट फूड सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे गाना सुनना है हमें भी लिंक भेज दिले वानी। ओके गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि डॉक्टर आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको आराम और शांति की सख्त जरूरत है। मरीज डॉक्टर साहब तो क्या मैं दवाई लूँ या डॉक्टर नहीं, बस सुबह शाम चाय का कप पकड़ो, रेडियो ऑन करो और आज सोनी मैम को ओहो सुन लो। मरीज उससे क्या होगा डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर उनकी आवाज़ में इतनी पॉजिटिव वॉइस होती है कि बीमारी खुद रास्ता भूल जाएगी। हो और इस मैसेज के साथ है अनिश यादव जी विलेज दुमरा यदुवंशी टोला सिवान से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इतनी प्यारी लाइन भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है अमरजीत शुक्ला है दुबई से, उनको सुनना है गाना पवन सिंह की आवाज में प्यार बिना चैन कहाँ रहे। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन से आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे अमरजीत शुक्ला जी दुबई से और इनकी तरफ से वॉइस फीडबैक पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं ये।
1: हम लोग को बहुत खुशी होता है ये ऐप, इस ऐप को आने से। ये हम लोग अपने गाँव से भी अगर अलग भी रहते हैं दूसरे देश में, वहाँ भी हम लोग को अपने भाषा अपने माटी का कार्यक्रम सुनने को, गाना सुनने को या अपने भाषा में बात करने का भी सुनने को मिलता है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ये प्रोग्राम मैं हमेशा सुनता हूँ, लेकिन आज पहली बार जुड़ा हूँ, अभी हमेशा मैं जुड़ूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप शो से जुड़े और हमेशा जुड़ते रहिएगा। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश यहाँ एक और पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मुझे नींद ना आए, और नहीं आगे लिख रहे हैं कि मुझे नींद ना आए तो मुझे सुला पाओगी क्या, मैं ना समझूँ मुझे हर बात पे समझा पाओगी क्या, हाँ मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है पर मेरे गुस्से में प्यार ढूंढ पाओगी क्या, क्या बात है। और इस मैसेज के साथ है पाजी यूपी चौवन से, तो ये है किसके लिए, ये भी नाम मेंशन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश जो है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हमारे पास पहुंचा हुआ है विष्णु कुमार जी की, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा है आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, विष्णु कुमार जी की फरमाइश थी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि गाना बजाने खाते धन्यवाद। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में। हेलो।
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
1: प्रिया कुमारी सिंह और रोज है।
0: ठीक, कैसी हैं प्रिया जी?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं मैम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए, बहुत आवाज़ धीरे आ रही है आपकी।
1: नाश्ता पानी हुआ है?
0: मेरा लंच हो गया है।
1: अच्छा, सब आवाज़ तो बताइए।
0: सब बढ़िया है, आप बताइए आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: सब कोई बढ़िया है।
0: तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: जी तो जी कैसे आपके बिना,
0: जी तो जी कैसे बिना आपके।
1: हाँ
0: है ना।
1: हाँ
0: और डेडिकेट भी करिएगा
1: आपको, और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी सोते
0: हैं। चलिए तो प्ले कर दिया गाना आपका।
1: थैंक यू,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।

और यहाँ काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए, लिख रहे हैं कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, और मी एंड चाय पी के हो। और मैसेज के साथ है सानिया सैफी जी से कृष्णा से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि फिर मिलते हैं कल सोनी जी, बाय बाय। इरशाद मास्टर जी है तनाव से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग सोनी जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल योर वॉइस योर चॉइस कार्यक्रम से। यहाँ बिल्कुल रोहित जी हैं देहरादून से, और यहाँ काफ़ी सारे अनीश यादव जी हैं दुमराई दुबंसी टोला सिवान से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये गाना, इस गाने में बुराई क्या है मैम बताइए। भैया गाने में आपकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम कार्यक्रम में कोई भी धार्मिक गाना हो, जातिवाद गाना हो, या फिर कोई भी अश्लील गाना हो, हम नहीं प्ले करते हैं। लेकिन आपकी जो गाने की फरमाइश थी वो गाने धार्मिक थी, जिससे जातिवाद को लेके जातिवाद थोड़ा हो जाता है, इसके वजह से हम आपके गाने की फरमाइश जो है नहीं प्ले किए। गाने में कोई बुराई नहीं है, आप सुनना है आपको, आप अकेले सुन सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ सुन सकते हैं, लेकिन हम रेडियो पे नहीं प्ले कर सकते। बस गाने में ऐसे ये नहीं है कि वो गाना अश्लील है, लेकिन वो गाना हम नहीं प्ले कर पाएंगे। बाकी अगर आपके तरफ से दूसरे गाने की फरमाइश आएगी तो हम ज़रूर प्ले करेंगे। और आगे यहाँ और भी सारे बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, लिख रहे हैं कि जी तो जी कैसे बिना आपके सुपर सॉन्ग मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 3:59 हो चुकी है, और इसी गाने के साथ अब आप सभी दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आप सभी से अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है

0: गोला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: तू जो है।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: हमरा संगे रहुआ चलें, ठीक है?
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में।

0: अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए।

0: श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
0: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: उत्तर बिहार का गौरव,
5: सारण प्रमंडल की शान,
4: गोपालगंज की धड़कन
5: और अपने भाषा की पहचान,
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
2: जी, मैं मनान कपूरा से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ, आज तो बारिश का मजा लिया आज।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, बारिश हुआ है तो मौसम ठंडा है।
2: आपके तरफ हुआ कि नहीं?
1: हाँ हाँ, मेरे तरफ भी हुआ है, एक घंटा हुआ 9 से 10 बजे के बीच।
2: नहीं तो एक घंटा तो थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि खेत का पट सिंचाई हो गया है थोड़ा। फिर अब धूप निकलेगा तब मजा आएगा।
1: हाँ, इतना से क्या होना है, धूप होगा तो उमस होगा।
2: बहुत मजा, अब कीड़े पतेंगे सब निकलेंगे, सब बहुत तो होगा, कमौरी भी निकलेगा। लेकिन हाँ, राहत मिला है
1: जी,
2: बहुत राहत मिल गया, इतना राहत। बच्चे सब बाहर निकल के खूब नहा रहे थे।
1: अच्छा लगता है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता है, हमको तो देख के ही उमंग हो गया है, कितना लड़के मस्ती में सब नहा रहे हैं। तब आज मैडम, आज दोस्ताना फिल्म का गाना सुनाइए ना।
1: जी, बता दीजिए कौन सा।
2: वो कितना मुश्किल है पर भूल जाना।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
2: आपको नहीं। अच्छा। पहले सोनी जी को।
1: जी जी।
2: और आपको
1: जी,
2: और आपके जितने भी लोग काम करने वाले लोगों को।
1: अच्छा।
2: हम तो सुनेंगे ही।
1: जी जी,
2: है ना। आप पर रेडियो प्रेमी जितने हैं रिमझिम का, खासकर उन्हीं को, है ना, और उनके साथ ये सब डेलीकेट रहेगा। बोल दीजिएगा कि मन्नान बोले हैं सोनी जी को पहले डेलीकेट रहेगा।
1: जी जी, बिल्कुल रहेगा।
2: हाँ बोलिएगा, ये काटिएगा नहीं आवाज।
1: नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे।
2: हाँ, ताकि वो भी सोनी जी तो सुनेंगे ना।
1: हाँ,
2: तो सुन ले तो ख्याल आ जाएगा कि हाँ, कोई मन्नान नाम का बोला था कोई। चलिए मेरा सब ठीक है, तब इसी को सुना दीजिए।
1: ओके, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ओके, थैंक यू।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल?
1: अच्छा है, कैसे है मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: आना हो गया ना सर?
0: ऐसा हो गया, आपका हो गया
1: जी? तो सोमवार को रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, शुक्रवार को
0: होता तो है।
1: तो 12 बजे फोन लगाए तो एक बार लगा तो कट गया।
0: अच्छा नहीं, शुक्रवार को भी रिकॉर्डिंग हुआ था
1: तो सब ठीक है मैडम जी?
0: हाँ, सब ठीक है। आप बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: गाना कौन सुन के सुना दीजिए।
0: ओके, कौन सा सॉन्ग?
1: तो हमने घर और मकान हमारे उद्योग, यही गाना
0: साफ सुनाई नहीं दिया, एक बार और बोल दीजिए।
1: मैंने ये गाना नो आम अमरुद के मकान बा तोहरे।
0: अच्छा चलिए ठीक है। और गाना किसी को डेडिकेट भी है
1: जी? आप जितने रेडियो रिमझिम तब दोस्त आर जे हैं सबके साथ।
0: चलिए बढ़िया, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैडम जी, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत हुई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अंबेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
15: नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
14: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
15: बिल्कुल अच्छे हैं। और सब घर परिवार?
14: सबको ही बढ़िया है। आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
15: बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है।
14: अच्छा, नाश्ता हो गया आपका? चलिए बढ़िया है। और बताइए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
15: जी हमें अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनना है, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तो।
14: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
15: जी सबसे पहले आपको और सभी गोपालगंज जिला वासियों को और सिवान जिला वासियों को, और रेडियो के सबसे बड़े फैन है कुशनिहारा मलिक जी हैं और चंद्रा कुशवाहा जी, उनको भी सुनाना चाहते
14: हैं। ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
15: आपका शुभ नाम?
14: मेरा नाम भारती है। आप भी अपना नाम बताते जाइए ताकि इसमें रहेगा तो अच्छा रहेगा।
15: हमारा नाम है राधे समरसिया, करतनी सिवान जिला के कबीरपुर गाँव से बतिया, सारा लोग परेशान गर्मी से दिन। और
14: अच्छा जी,
15: ओके, गुड नाइट।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनपुर जिला गुना।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: दीदी हमारे यहाँ पे बहुत बेहतरीन बरसात हो रही है, कल रात से बरसात हो रही है, अभी बरसात हो रही है। जी
1: चलिए बढ़िया, मौसम तो ठंडा होगा आपके तरफ।
0: जी जी जी, और नाश्ता पानी हो गया आपका?
1: जी मेरा हो गया, आपका हो गया क्या?
0: हाँ मेरा भी हो गया।
1: और क्या बताइए, कैसे हैं, क्या
0: सुन रहे हैं दीदी? गाने दिन दिन चलाते रहते हैं दिन भर, और क्या करें। और क्या
1: आज कौन सा गाना सुनना है?
0: जी गाना सुनना था अनुभव है जी का।
1: कौन सा गाना?
0: शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी सबसे पहले आपको है, और अपने कजरा सिंह लोधी है, मांगीला चंदेल है, मांगीला काका है, गोपाल ओझा जी है, सतवा साहब।
1: जी तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
9: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
10: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: ठीक है, नमस्ते जी।
11: नमस्ते,
12: का हाल बा?
11: हाल तो ठीक बा, अपन बताई।
12: ठीक है बा, मौसम के हाल चाल बताई।
11: आज तो 9 बजे से बारिश भइल है, 10 बजे ले।
12: हाँ।
11: मौसम ठीक बावे?
12: हम लोग के तरफ तो पंजाब में बारिश नहीं होता है, कोई होता है, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ता है।
11: अब तो मतलब मानसून आ ही गया है तो हल्का फुल्का बारिश स्टार्ट हो रहा है। अब उधर नहीं होता है क्या कभी?
12: नहीं, कितना दिन से बारिश यहाँ कहाँ हो रहा है।
11: अच्छा, कोई नहीं, इधर से जाएगा उधर भी घूमते घूमते।
12: हाँ, इधर भेजिए।
11: हाँ हाँ, बिल्कुल भेज रहे हैं। और सब बढ़िया है?
12: हाँ बढ़िया है।
11: चलिए बढ़िया होना चाहिए। कौन सा गाना सुनिएगा आज?
12: गाना सुना दीजिए, परदेसियों से नवाखिया मिलाना।
11: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाइएगा भी?
12: हाँ हाँ,
11: बता दीजिए।
12: परमात्मा को, बिजली को, धनजय को, हमारा स्वराज पूजा को, रानी को।
11: जी जी चलिए बढ़िया है।
12: कभी कभी हम लोग के टाइम अथी नहीं मिलता है, टाइम के अभाव से अथी थोड़ा देर अथी से बंद हो जाता है मोबाइल, तो हम लोग सुन नहीं पाते हैं, ऐसे कि हम लोग को मालूम नहीं चलता है कि कितना बजे बजेंगे कितना बजे नहीं बजेंगे। तो
11: 5 से 7 बजता है शाम को और सुबह में 9 से 11 बजता है। तो चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ ग्राम खोरा मनसिंहा पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार शाह।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आप लक्ष्मी, आप कैसी है? आपकी पूरी रेडियो रंजन संपूर्ण परिवार कैसे है?
1: जी सब कुछ ठीक है।
0: मौसम बताइए, मौसम के क्या हाल है?
1: मौसम तो अभी सुबह में थोड़ा सा बारिश हुआ है, तो अभी ठीक है।
0: अच्छा अच्छा,
1: आपके तरफ?
0: इधर भी वैसा ही है, इधर ठंडा है, मौसम ठीक है। बारिश हुआ है अभी एक घंटा पहले, अभी छूटा है बारिश।
1: चलिए बढ़िया।
0: 9 से 10 बजे के बीच बारिश हुआ है, खूब झमाझम।
1: जी जी, इधर भी उसी टाइम हुआ।
0: जी जी, चलिए तो हमारे आपके पास और सारी तरफ मुझे बारिश के पानी बौछार हो गया, खेत के लिए बहुत बढ़िया हो गया, लाभदायक हो गया।
1: जी जी,
0: रोपनी अब हो सकता है, सब लोग करेगा। आपके तरफ रोपाई हुआ है कि नहीं अभी?
1: अभी तो मतलब बीज गिरा है, तो अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा और 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा।
0: तो हो गया है हम लोग के गांव में, लेकिन फिर भी कुछ लोग के बाकी है अभी, कुछ लोग के छोटा छोटा बिया है, इसीलिए
1: शुरू हो गया है, लेकिन
0: थोड़ा
1: बाकी है।
0: तुझे तो इधर भी हो गया। चलिए ठीक है, बोलिए
1: कौन सा गाना?
0: हाँ, आज फरमाइश, आज फरमाइश सुना दीजिए, लता मंगेशकर की आवाज है, मेघा रे मेघा, मेघा रे मेघा, इसे करके गाना है, वही सुना दीजिए, क्योंकि आज बारिश हुआ है तो पानी क्यों उतरता है, मन क्यों उतरता है, तूने किसको याद किया, इसी करके गाना है।
1: गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको, रेडियो संपन्न परिवार को, और दोस्त में उत्तम कुमार जी हम सबको स्वागत सोनी नसीदीन खान दीपक दास उदय भान ठाकरे छिंदवाड़ा मतल दे राजेंद्र जब भारती संत लाल गौतम हमारे नाम से जाने पसंद तमाम दोस्तों, और विशेष करके मोहम्मद सलार अंसारी है मझौलिया को सुनाते हुए, संत लाल गौतम राजेंद्र जब भारती को सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो रंजन सुनते रहिए।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
4: और 9097-6160-02।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9953-69015 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
12: Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: हेलो मैम, नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: कैसन बानी?
14: हम तो ठीक बानी, रोवा बताई रोवा कैसन बानी?
15: बस ठीक है बानी, आज छुट्टी रहेला
14: ना।
15: सोमवार का छुट्टी रहेला
14: सब, और सबका होता
15: है। बस क्या हुई, अभी नहा धोया के रावरे रावरे खाती हवा खबर नहीं है कि तुम कॉल करे के बाद न तो लेट हो जाये।
14: चलिए बढ़िया बा, नाश्ता
15: अभी नहा धोया के कॉल करो।
14: नाश्ता तो कैले ना हो
15: ना अभी कहा।
14: वाली बता दी कौन सा गाना सुने।
15: गाना तो आज खुशबू सिंह की आवाज में सुने के बाद।
14: कौन सा गाना?
15: राजा कहियो मावर खाके मर जाए।
14: अच्छा, और ये गाना क्यों के सुना हूँ के बाद?
15: बस रौड़ा के सोनी मैम, जितना लोग सोनी सुन ली। सोनी मैम अभी आई कि नहीं?
14: आई है।
15: और सब बढ़िया, पूरा परिवार?
14: सब बढ़िया।
15: चलिए सब ठीक है, सुनाइए।
14: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
15: सुनाइए, ठीक है, ओके।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 FM में।
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: पहचान रहे हैं क्या?
0: जी
1: कैसे पहचान गए आप?
0: आपकी आवाज़ सुने तो पहचान गए।
1: आवाज़ से सुना तो मेरा क्या नाम है?
0: क्या नाम है? गणेश नाम है।
1: अच्छा चलिए ठीक है, और सब बताइए?
0: और सब बढ़िया है।
1: तो बारिश हुआ है?
0: इधर तो बारिश हुआ है, आपके तरफ हुआ या नहीं?
1: मेरे तरफ हुआ है, बाकी बहुत कम बारिश हुआ है।
0: अच्छा हाँ, इधर भी हल्का हल्का हुआ है, मतलब एक घंटा हुआ, थोड़ा थोड़ा मतलब धीमे धीमे हो रहा था।
1: मतलब खेत में बारिश नहीं लगा है पानी।
0: चलिए, जितना नहीं होना था उतना भी हो गया, तो उतना भी राहत दिया है।
1: हाँ इतना भी सांस हो गया है, गर्मी थोड़ा कम है अब इतना ही। आप सब बताइए, खाना ना खा कर आए हैं कि नहीं?
0: हाँ खाना तो खा ही के आते हैं, नहीं खाएंगे तो रहेंगे कैसे।
1: अच्छा, कल सुनील दीदी के बर्थडे था, तो आप कुछ मांगे नहीं थी?
0: बर्थडे मना नहीं थे, यहाँ मना तो था।
1: वहाँ पे मना है, अपना घर पे नहीं मनाई है?
0: तो घर पे भी मना था, यहाँ भी मना।
1: अच्छा, तो आपको क्या खिलाई थी?
0: केक आया था, केक काटे थे लोग।
1: खाली केक खिलाई थी और कुछ नहीं खिलाई थी?
0: नहीं, मिठाई कुछ दिन पहले ही खिलाई थी हम लोग को, काफी पतली था।
1: अभी आई है क्या सुनील दीदी?
0: हाँ आई है।
1: तो चलेगा?
0: तो चलेगा।
1: चलिए ठीक,
0: गाना सुनिएगा, गाना बता दीजिए।
1: गाना सुनना है हम के बरस, हम के बरस, यही बजा दीजिए।
0: अच्छा,
1: मेरे महबूब के घर जाना है यही।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: डेडिकेट रहेगा आपको, सोनी मैम को, देविया मैम को। पहचान रहे हैं?
0: नहीं हम आए तो वो नहीं थे, बस सोनी जी को मुलाकात।
1: तो सब लोग का डेडिकेट रहेगा, मेरे बहन है करिश्मा, उसका भी डेडिकेट रहेगा। फोन धराए हैं हम, बोल रहे कि दीदी जी में बात करेंगे। बताइए ना, ये कोई बात हुआ?
0: नहीं,
1: ऐसा ही तो फोन नहीं लगता है, आज मेरा व्यवस्था नहीं, कुछ बताया पहले ही कॉल लग गया।
0: तुरंत का कॉल कटा हुआ था।
1: अच्छा, मतलब आज बीजी जी बताया था, सबसे लग गया था।
0: नहीं तो टाइम भी तो मतलब 12 बजने वाला, इधर थोड़ा कॉल स्लो हो जाता, उधर एकदम लगातार आता है।
1: इसलिए अब उधर नहीं लगाएंगे, इसी समय लगाएंगे, ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, पहचान रहे तो कोई बात नहीं है। और सारा कस्टमर लोग है, देख रहे हैं कि फिर लगा रहे हैं, लग जाएगा तो ठीक है। मेरे बहन बोल रहे कि मैं बात करेंगे।
0: अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
1: ठीक है।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
11: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
12: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
13: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
13: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
16: नमस्ते दीदी।
15: नमस्ते, क्या हाल चाल?
16: क्या हाल चाल?
15: हमारा बढ़िया, आप बताइए।
16: हमारा ठीक बाटे, यार सब ठीक बा न?
15: हमारा ठीक बा। खाना हो गया का?
16: हाँ, रात हो गई।
15: हम तो खाना खा के आए नहीं अब घर से, अब एज लेके आए नहीं सन, तो 1-2 बजे के आस पास खानी सन।
16: ठीक है, तो नहीं हम कहाँ से बोलते नहीं?
15: करिश्मा बोल रहे हैं।
16: अच्छा, चिल गल बनी?
15: हाँ, पहचाना तो नहीं।
16: चलिए पहचाने की चाहे हूँ। गाना सुना बटे हमारे
17: बता दी कौन सा गाना
16: है। मिल्कावा से ये कौन सुना दी
17: अपना पसंद से तब नो
16: रहुआ पसंद से सुने।
17: अच्छा भोजपुरी में तो उतना हम सुन ले नहीं की तो हमारा बुझेबे ना कर ला रोल
16: बताएंगे कौन बजा दी चाहे देव भाई कौन बजा दी।
17: अच्छा
16: भैया फोन करे रहे हमका ठीक
17: डेडिकेट भी बा।
16: हाँ दीदी के सबसे पहले दरवाजा के रहिए अग्रबाद हमरा जितना सुनता ही लग
18: रहा है जान पहचान हो
16: गया दीदी मैम से भय सब
17: पूछे नहीं कहे नहीं के बाजत गाना
18: पूछम ना खूब बढ़िया से जानता नहीं।
17: और सब घर में सब क्यों ठीक बनो।
16: हाँ सब क्यों ठीक में लगवा घर में
17: हमने ठीक बनी
18: अपना साथी लोग लगे बैठल रही।
17: अच्छा
16: बारिश होता है
17: बारिश तो भय रहा 9 से 10 के बीच में।
16: हाँ ये भय रहा खुलल बटे तो बैठल बने सुन दुआ।
17: अच्छा चलो कहीं तो बैठ के थोड़ा बहुत मस्ती कर लेवे के चाहिए तो जान पहचान भी होकर जरूरी बाबे केहू केहू से बात करे की इच्छा होला। गाना प्ले करता नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं डॉक्टर अमोद कुमार ग्राम जयचित्रा जिला उत्तर बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: अच्छा है मैम,
1: मेरा भी है।
0: और मौसम है आप उधर का?
1: मेरे यहाँ का मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
0: हमारे यहाँ में बारिश हो रही थी, अभी सुबह में बारिश हुई है।
1: अच्छा, इधर भी हुआ है हल्का हल्का बारिश सुबह में 9 बजे से।
0: जी जी, हमारे यहाँ उस समय ही बारिश हो रही थी 9 बजे करीब। इस समय थोड़ा सा बारिश बंद है, मौसम सुहाना बना हुआ है।
1: जी जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना सुनवा दिए तुम्हें देखे मेरी आंखें अमेरिका।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: बस आपको और पूरे रिंजिम के जितने भी श्रोता है सभी को, रिंजिम पूरे परिवार सभी को सुना दीजिए।
1: ओके चलिए, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हाँ हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: हेलो,
12: हाँ जी बोलिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
11: हाँ ठीक है मैम, अपना सुनाइए।
12: मेरा भी ठीक है।
11: गाना सुना दो।
12: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
11: नदिया के पार का कोई सॉन्ग बजा दीजिए।
12: नदिया के पार का कौन सा सॉन्ग?
11: बबुआ हो बबुआ।
12: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है? बता दीजिए किसको।
11: हमारे यहाँ काम करते हैं हमारे वीरेंद्र जी है, राजू जी है, मनोज जी है, विजय जी है और भी सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी भाई बंधु।
12: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: हम थावर से, रामाजी प्रसाद, राजन मार्केट से।
1: जी जी,
0: आज देखो बारिश भइल है कि ना?
1: हाँ हाँ, बारिश से ना भइल है, 9 बजे
0: हाँ भइल है बारिश, नगर पानी गिरल है आज। हाँ, फिर तो हाउस हो गई, बारिश गिरा बाद फिर बुझाते अंदर से हाउस बा।
1: अभी तो पूरा तरह से धरती गीला नहीं है ना भइल, अभी तो उमस होखबे करी।
0: हाँ हाँ, गाना सुना दी।
1: बता दी कौन सा गाना सुने?
0: मायापुर भैया समान कर झूमे जैसे मनवा नाते मोर।
1: अच्छा, और गाना क्यों के सुनाऊं के बा?
0: जितना लोग सुनते सब कुछ सुने, हम सुने, रवा सुने।
1: चले ठीक, और सब ठीक बा न?
0: हाँ सब ठीक बा।
1: तो फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे
0: सुनते 5 बजे तो सुनते रहला।
1: हाँ हाँ,
0: नमस्ते।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
13: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
16: जी मैडम नमस्कार।
15: नमस्कार,
16: कमलेश बोल रहे हैं हर कुमार।
15: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
12: ठीक है मैडम, आप लोग का आशीर्वाद अच्छा है मैडम, लेकिन आज काम उम नहीं चल रहा है, ठंडा मौसम है, बारिश हुआ है थोड़ा सा।
15: मौसम तो ठंडा हुआ है।
12: हाँ बहुत ठंडा हुआ है। अच्छा है
15: तो नाश्ता हो गया है आपका?
12: जी मैडम हो गया है, बैठे हुए हैं, गाना सुनना चाहते हैं।
15: अच्छा बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
12: वो गाना नहीं है, बितवा भूल ना जाना, वही गाना सुनना चाहते हैं मैडम।
15: इसको डेडिकेट भी है?
12: हमारे साथ में पवन जी है, धनंजय फासी है, उनको सुनाना चाहता हूँ, जितना लोग सुन रहे हैं सब किसी के साथ और आपको भी।
15: अच्छा जी, लगता है कहीं किसी पेड़ के पास बैठे हैं, चिड़ियों की बहुत चहचहाट आ रही है,
12: ठंडा मौसम है, अभी जामुन के पास में बैठे हैं।
15: तो गाना प्ले करते हैं?
12: जी मैडम।
15: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: नमस्कार।

0: नमस्ते। हेलो
1: क्या हो रहा है मैम?
0: जी कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं?
1: कुछ नहीं मैम, बस बैठे हैं।
0: अच्छा, तो नाश्ता हो गया आपका?
1: हाँ मेरा हो गया। आपका हो गया? मैम गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: मैम विदेशी में गाना सुनना है।
0: कौन सा गाना?
1: काहे करे लो फोन यारो।
0: एक बार और बोल दीजिए, आवाज कट रहा है आपका।
1: विदेशी में का गाना सुनना है, काहे करे लो फोन यारो।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: आपको और साले मतलब सारे सुनने वाले सुनता हूँ।
0: अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना।
1: गुड़िया कुमारी।
0: चलिए फिर, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: Now pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
4: Pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
6: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
7: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: मैं मोहम्मद यूसुफ, अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला।
9: कैसे
8: है? हाँ, अभी तो मौसम सुबह में पानी इधर हुआ है। मौसम अभी बहुत अच्छा है, इधर सुहावना मौसम है।
9: चलिए अच्छा है।
8: उधर गोपालगंज में?
9: हाँ, इधर भी हुआ है तो ठीक है मौसम अभी।
8: हाँ, मौसम ठंडा है, बड़ी व्यस्त बता रहा है आपका मोबाइल।
9: अच्छा,
8: हाँ हाँ, सुनिए ना, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना आसान है, आपके यहाँ फोन लगाना आसान नहीं है।
9: अच्छा,
8: अभी तो कॉल 1.5 घंटा पीटते रहिए तब जाके पकड़ता है।
9: अभी तो कॉल कटा तो तुरंत आपका कॉल आया।
8: हाँ, तो बड़ी देर से लगा रहे थे ना।
9: कॉल ज्यादा ही हो जा रहा है,
8: बहुत ज्यादा हो रहा है। आपका कस्टमर इतना ना बढ़ गया है, पूरा बहुत लोग जुट गए हैं आपके साथ।
9: जी,
8: आप लोगों का जो आवाज है आपका, और तो बहुत सोनी का बहुत अच्छा आवाज है। आप भारती जी बोल रहे हैं ना?
9: हाँ,
8: तो आप दोनों आदमी बेमिसाल हैं।
9: जी, सब आप सबकी कृपा है।
8: हाँ, बहुत सुंदर, बहुत मीठा आवाज आप लोग दोनों आदमी को, हमको समझ में ना आता है कि कौन बोल रहे हैं।
9: अच्छा,
8: सेम एकदम एक आवाज में,
9: कभी कभी हो जाता है।
8: हाँ हाँ, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको गाना सुनाइएगा,
9: बता दीजिए।
8: बांसुरिया अबे ही पुकारे।
9: अच्छा,
8: अपना मेडिकल के सभी स्टाफ और खास करके आपको और कन्हैया प्रसाद जो फौजी से रिटायर किए हैं, वो आपका हरदम रेडियो सुनते रहते हैं, तो वहाँ करके सुन के हमको बताते हैं दुकान पर।
9: अच्छा,
8: कहते हैं कि आपका गाना, उधर हम व्यस्त हो गए थे कुछ दिन, कह रहे थे कि आपका परमेश्वर नहीं आ रहा है, अपने थोड़ा दूसरे काम में लगे हुए हैं, बिजी है, इसलिए नहीं आता है। तो बराबर सुन करके वही बताते हैं, हमको तो फुर्सत कम मिलता है, कभी सुन पाते हैं कभी नहीं सुन पाते हैं।
9: कोई तो सुनता है ना।
8: हाँ, इसलिए तो आपसे, आप लोगों को अवधि हमको इतना अच्छा लगता है कि हमको, इसलिए हम फोन लगाते हैं आप लोगों को।
9: चलिए,
8: अब सोनी जी और फिर आप अभी आ रहे हैं आप।
9: सोनी जी अब अभी तो मतलब जाएंगे लाइव।
8: हाँ, वो लाइफ में रहती हैं। उनका ड्यूटी चेंज हो गया है।
9: चलिए फिर रखते हैं।
8: हाँ ठीक है, ठीक है, गाना सुनवाइएगा।
9: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस आज तो पहला ही कॉल लगता है हमारा ही शामिल हो गया मैम।
1: जी जी,
0: आज तो बहुत इंतजार भी नहीं करना पड़ा मैम।
1: हाँ हाँ, क्योंकि अभी जस्ट जैसे शुरू किया आपका कॉल आया।
0: जी जी जी जी मैम,
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: बस कुछ नहीं, आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम। वो तो काम तो अपना चल ही रहा है, मशीन चला रहे थे जेसीबी, बस हम देखे अभी 11 बज गए, बस ट्राई किए, फोन भी लग गया मैम।
1: अच्छा जी, चलिए तब बढ़िया है। बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा
0: जी आज हमको? सुनवा दीजिएगा जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: और गाना चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528074088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: ओ रघु

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रउरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा छोटे वर्जा भार। रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुँचे की कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथे राव दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लिफ्ट उठावल जाओ छोटी बिरजा भार के।
1: अरे बिरजा भार आगे आगे भाग रहल बड़े आ कोने तरह से जा रहल बड़े।

0: बेली कह तारी
1: ए भैया का देखो हम तो ठूठ हो गइल बानी हमर लगे कोनो जगह ने डाढ़ पात सिवा बा पतई होते सब झर गइल बा ठूठ हो गइल बानी
0: हे बेली बहिन
1: हम कहां तरह के छुपा
0: अगर तू हमरा के नहीं खुद छुपावत
2: तो हमार ब्याही पीछे से देखा आवतिया हमारी इज्जत ना बची हमार धर्म ना बच सकेला जल्दी से तू हमरा के छुपा ल
1: अच्छा जब ऐसा बात तू कहता तो आवा हमरे पीछे आके तू लुका जा
2: देखी मुझे बिरजा भार छुप गए बड़ा आवे ने हेमंती कौने तरह से रोत अपने पति के खोजत चलती है
1: धोधड़ में लुकाई रही है भैया तू

0: जब वहाँ पहुँचल बारी जब बेली बहन के देख तारी तो का कह तारी
1: का कह तारी
0: बेली बहन से रोड़ो के कौन तरह से का कह तारी आ सुनबू तो आ रे सुन

0: हे बहिन,
1: हे बेली बहिन, हमारे पति के देखा ये जो तक हमारे पति आयल बनन, तू बताओ जो हमारे पति देव कहा गेले हैं।
0: सुना बहिन,
1: हाँ
0: अगर तहार पति देव एजा ले आई रहते हैं,
1: हाँ
0: तो हम जरूर बता देती।
1: ना हे बहिन,
0: हम उनके देखबे ना कोई नहीं है।
1: एगो नारी के दुख नारी जरूर बुझेली,
0: हम सब कुछ बुझाता नहीं,
1: लेकिन तू हमारा से छिपाओ तारू हमारे पति के बता दो।
0: बहन सुनो, जब तू धर्म के बहन हमके मान लू हो तो हम तारा से साँस साज कहतनी तहार पति जी एने नहीं खन आई। तू जा पीछे लवट के देखो एने नहीं खन आई, एजा ले आई ले नहीं खन, तो हम कौन चीज देख के बताई। जा पीछे अबे हुई है,
1: हमार पति देव पीछे बड़न।
0: हाँ
1: अच्छा हम जा तनी पीछे देख तनी।
0: पीछे देख लो तू,
1: लेकिन हे वही अगर हमार पति देव यहाँ आ जाइ हैं तो उनका कह जैसे जाए मत दिया ये बहिन, जाए मत दिया।
0: ठीक बा बहिन, तार पति जी आ जाइ हैं तो हम उनकरा कह जैसे ना जाए दे।
1: अब देखी
0: उनके यही जर रोक लेम हम।
1: हाँ झरझर रोह तारी हेमंती, आप बेली से का कहतरी।

0: देखी वहां से लौट के आ रहा बड़ी जब नहीं आईली हेमंती पहले वो जो बिरजा भार निकल के कहते धन हो बहन तू हमार इज्जत बचा दिलू जौन की हमार ब्याही यहाँ तक आई रही और हमरा के छोड़ के पीछे चल गई। आज के बाद हम तरह के आशीर्वाद देता नहीं।
1: हाय भैया हमके कोनो आशीर्वाद दे के जाई हो
0: कि जा हमारा आशीर्वाद ही होई कि आज के बाद तू हरा भरा हो जाइबू।
1: अच्छा ठीक बा अब फॉर्म फुलाएम नू।
0: हाँ
1: ठीक बा
0: अब वहाँ से जोगी बिरजा भार अपन राय धैले बनन राय धके चल रहल बन कोनो तरह से
2: जाए बेली ऐसे तू फॉर्म फुलाइबू।
0: हाँ अरे झूमत झा

0: अब वहाँ गंगा जी के किनारे पहुँच गए बड़न। देखी वहाँ के हाली बा कि दू गो मलाह बड़े सर।
1: ए भैबो
0: कारे भैबो
1: ए भाई मान तो नहीं रे भैबा।
2: हाँ भैबा
1: कारे दिन भर बैठले रहल जाई एको गोहकी लोनी से भेंट नाई होई का आज हमनी के
2: का कहल जाओ के कर मुंह देखले बानी सो
1: नाई है बांध दे खूंटा में।
2: हां
1: आज तो घरे जाम तो मेहरारू हमरा के बड़ी मारी मारी।
2: अच्छा
1: कहले रहनी कि तू मसाला पीस के तैयारी कइले रहियो आ हम जा तनी नाई खे के पैसा बिटोर के बाजारे जाए आ मछरी लेके आए।
2: तो बा गड़बड़ बात बहनियो नहीं के भई।
1: आ बहनियो नहीं के भई लेकिन एगो बात बा।
2: हां
1: यही जा बैठक है।
2: हाँ
1: अपने के हुआ ही देख भाई बा 20 जने के संति एक जने से लेवे के बा।
2: अच्छा
1: आ तब उनकरा के हेलावल जाई।
2: हाँ
1: अरे जतिया के हई।

0: हाय बोरे देख ओ मंगा पते
1: अच्छा
0: लगा लगा के खड़ा रहो
1: हां
0: चाहे बैठो रहो
1: हां
0: हम चलते रहियो याटे पर
1: अच्छा भाई
0: देख के मुसाफिर आवेला कि नहीं आवेला
2: अरे दादा हो दादा हम का कोई ला अरे हई नतिया के बेटा लिया के चलल बा हमरा मर्दा के अरे नतिया रुदला
1: आय बाप
2: काहे लिया कहले अरे
0: भाई बोरे
1: हम नहीं की जान
2: अरे बाप हो बाप मछरी खैले त हमरा 10 बरिस हो गई जहिया बिया भइल कौन भइल तैया हई नतिया के बेटा गोई तेतना बहस कि बाप रे बाप हमरा मछरी मरले से जवार के लोग उता जाला
0: चुप रह भाईबो
1: हां भाईवा
0: रे हई जनटरवा के माई के बोला के लेके चल आइल रे
1: जनटरवा के माई हिय का
0: हां हमरे मौगी हिय
1: नो ना अरे बाप रे बाप
0: ते बोला के ले ले
1: ना हम काहे के लिए
0: जोते जोते आइल बिया मछरी खाती काहू
2: का
1: भाई हमरे बता तजमुला खबर नाम दे देले है
0: अब का जने हम ने खी जानत कहो
2: का
0: तरह ये टाइम रे लई लेके
2: नाती के बेटा 15 गो लइका जन्म होले बा ओ कनी के खेवा खर्चा कोई से आई तबे नु काम चली
0: कहो
2: बुचुन भाई
0: पहले बात सुन लो
1: बुचुन भाई के बोला लो लगी
0: हां हो भाई 15 गो बड़ा सही से नु सरकार हमरे पीछे नसबंदी दौरा देले बिया लेकिन हम भेटात नखी के हमार नसबंदी
2: हो के लेकिन तहरा ढंग से जो खवाई करवा ये को पैसा बा नाही
0: तू जाना पहले तू चल काहे आइलु हउ हम खे के आ तरह के मछरी लेइए के आए आ पैसो लेके आए
2: अच्छा हम जा तनी
0: जा एगो काम करी हो
2: हां
0: सोके रे दिया बुता के सजवे सूत रहिए ना त जवाना जुग बहुत खराब बा
2: का हो
0: ना त दिया अरे डीडी धरवले के बहने कोई बुआ के घर में ढुक जइहे सन हम तनी आज रात बिरात आए
2: सही है कहत तनी
0: ओ रात बिरात
1: आए यार
0: करे यार
1: अरे जाए दो हम जाके खबर ले लेब जाए दो
0: देखई है ते जेबे रे रे पुरमारी कर पंडू बाते जेबे रे तभी एना से तोरा के घटो पर नहीं बोला के ले हम ना नइए पर तोरा के राखो ओ जरो हम चल तनी ओ नदी के किनारे आटे पर बैठ तनी
3: देखी अब जो मला लो दोनों जने एक जने एने सुतल बाड़े एक जने ओने सुतल बाड़े अब बिरजा भारो जी पहुंचत अरे धैले

0: बाप बाप ये तरह के सूतेला। अरे भैया मला आए बड़ा सुतल बड़ा जाहो। हे भाई मला ए मलहा
1: क्या हो
0: ए मर्द है देखवा हमरे ओर
1: है
0: एगो जोगी फकीर आदमी है तन हमरा के पार कर जल्दी है भैया
1: करा कुछ बुझाता
0: का
1: ए नाज पर सुतल बन जा गोहटी परेशान कइले बड़ी सन
0: है मर्द गोहटी ए बेरा खोज तल लोग
1: ए मर्द एने से ओने जा तरी से के हो जा इतन में लाइन ना आई खुली
0: सुना सुना भाई देखा के है तेरे सामने खड़ा बा
1: ए वो को हम नहीं खोलो सुतरे।
0: ए भाई ए मला अरे बड़ा लेट होता हो तन हमरा के जल्दी ओपर पहुंचा द जौन कह तन खेवाई हम दे देता नी
2: के हो तू हो
0: हम एक जोगी बाबा आदमी हैं जोगी फकीर हैं
1: भागे जैसा
3: बियाने बियाने से अपने
1: खाईला मर्दा बियाने बियाने ऐसा तू मुंह देखा ला जोगी आ फकीर लोनी के दिन भर हमनी के बहनियों से बच जाए जा
0: सुना अगर जोगी फकीर के तहरा बहन हो जाए ना
1: सुन भावे भावे रे
3: भावे
1: परसों के बात यो नहीं देखले रन जाए एक जने जोगी रहले एक जने साधु रहले एक जने फकीर रहले एक जने देवान बाबा रहले करे दिन भर एको पैसा से भेट भाई
3: ना
1: आ देखे बिहाने दिमाग खराब खाती फेन चली गेले दिमाग खराब करत रह तू जान लियो।
3: हाँ भाई
0: ए भाई सुना अगर हम कहला देता ला तो बड़ा तहार पुण्य होई
1: पुण्य।
0: हाँ
1: हमरा दोहरा के पुण्य नहीं चाहिए हमरा पंद्रह गो लड़का बना सो ठीक नु आप पहलौठी के एगो मेहरारू बिया।
0: हाँ
1: बोलक नहीं ए भाई अब हमरा पुण्य उन्य नहीं चाहिए
0: पहलौठी के मेहरारू का होले हो हम नहीं
1: वो पहले पहल के हाँ मने
0: अच्छा
1: जा हमरा कुछ कोई कमी नहीं खे
3: भाई वो एक दिन तोर बिया हो।
1: हाँ भाई मानते नहीं दूसर का बिया खाती दौड़त लो बाकी दहेज हम कहतनी कि नहीं ले
3: ठीक
1: यही कमारे नहीं खे हो एगो काम बा जेबे ओ पार।
0: हाँ भाई हम कहला दे जोन पैसा कह जाता हम दे देता नहीं
1: पैसा देबो।
0: हाँ पहनी करा देता नहीं तो हलक
1: बहनी करबो।
0: हाँ
1: द ले आओ
0: त हला द
1: ए भाई बैठा ले रे
3: बैठाओ ले चल हलाओ का कर
0: ले भाई है पैसा ला हमके ऊपर कह द
1: बड़ा नौगराह बुझा तरी नए उम्र में जोगी सध लेबा
3: कैसन बाप महतारी कष्ट करे जी बा
1: का जाने भाई बा ए कितना दे तड़ पैसा हो
0: ए भाई जोन तू कह तन देता नहीं ई जानत बाड़ा
3: ए जोगी बाबा।
0: हाँ
3: तर लग नहीं खे
0: हमर लग पैसा ना आई बा
3: तो मोती जी से ले ला
0: का मांगी है बड़ा पैसा वहाँ का सुनते बानी
1: ए बाबा तू सुना तारा कुछ
0: मोती जी से।
1: हाँ हाँ वहाँ से मांग के दो चाहे अपने लग से दो चाहे कोई से दो बहनी ढंगर करा हो
0: टीसी में रह ले वहाँ से।
1: हाँ हाँ
0: का मांगी कितना रुपया मांगी जे वहाँ के दे अब खेवाई तई भगवानों के लागल रहे खेवाई।
1: हाँ
0: तो हमरा तो खेवाई दिहल जरूरी है बा
1: तो ओई मेनू हमनिये के नु खेवत रहन जा भगवान जी जब आई रहले।
0: अच्छा अच्छा
1: हमनिये के नैया पर हमनिये के खेवत रहन जा
0: ठीक बा हम मांग के दे देता नी
1: दे जल्दी दे
0: भाई पैसा ले ली हमरा के जल्दी ओ पार कर दी
1: ले ले भेला चला रहे पर बैठो
0: चला
1: खोल ले हो खोल बरहा खोल लगा दे हने
3: खोल ले मन ली लबदा धर है
1: ओने से ते ढकेलिए ने से हम ठेला
3: ठेला तानी चला
0: आ देखें इन्हें जब बिरजा भार नाई में मलालो लेके जा रहल बालो जेहे कुछ दूर आगे बोल ले तब तक उनके ब्याही पीछे से आवा तारी
1: आई पाने तरह से हमारी हकारी चल ठीक है हमारे धोरे कराके
0: अरे कवना डगरिया हो थई के
3: ये पठे दियो
0: अरे सामी मारे चली हो गई ने
1: जोगी बाबा अस्थिर धोके बैठा रही हो
3: भाईले बानी
1: अब हम खोल देले बानी अपन नाई
3: ठीक बा

0: विशेषता। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत श्रीराम जी अधिनियम आज से लागू। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार विधान परिषद के सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रहे मौजूद। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पीवी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत प्रदेश के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अकुशल मजदूरी मद में राज्य सरकार ने 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री कुमार ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
3: विकसित भारत जी राम जी योजना आज से शुरुआत की जा रही है। इससे देश भर के जो श्रमिक हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। साल में 125 दिन काम देने का इसमें प्रावधान किया गया है और आपदा से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ मौसम आधारित योजना बनाने का ये अधिकार ग्राम पंचायत को दी गई है और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी विशेष जोर दी गई है। तो मैं समझता हूं कि बीवी जी राम जी योजना लोगों के लिए मील का पत्थर साबित।
0: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है।
4: विकसित भारत जी राम जी योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त DDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख तक, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। समाचार कक्ष से निदेश श्री।
0: राज्य सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत और कुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
5: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने 5 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये केंद्रीय विद्यालय पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी में खुलेंगे। कैबिनेट ने राज्य के 31 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन संशोधन नियमावली 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 34,59,00,000 रूपये की लागत से गन्ना यांत्रिकीकरण योजना और 37,93,00,000 रूपये की लागत से एक विकास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 29,56,00,000 रूपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके अलावा कैबिनेट ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बिहार के 1100 श्रद्धालुओं के लिए 20 जुलाई से 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा को मंजूरी दी। यात्रा के आयोजन और श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर 2,50,00,000 रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी ताकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और वितरण की नियमित मॉनिटरिंग होगी तथा लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। अगर कोई अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जब से स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूं, कई समस्या सुनने को मिली है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से ठीक करें।
0: स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य के एनएच और एसएच पर 100 नई एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदस्यों को शपथ दिलाई। भाजपा से भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने शपथ ली। वहीं जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद तथा लोक जनशक्ति पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी ने शपथ ली। इसके अलावा राजद के सुनील कुमार सिंह को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: मस्तर की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। गोपालगंज के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 2 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बांका जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि रजौन, कटोरिया और धोरैया थाना क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही 53 पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का भी स्थानांतरण किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पंकज कुमार तारात को विशेष निगरानी इकाई से हटाकर पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी का महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि राजद देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के राजपुर थाना में पदस्थापित एएसआई मुन्ना यादव को 8,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से केस में मदद करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। बगहा की एक अदालत ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने उपद्रव और तोड़फोड़ के मामले में फरार चल रहे 40 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार विधान परिषद के सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रहे मौजूद। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अच्छा भैया, अब आगे के कहानी सोठी बीजाभार रउआ चौथा कैसेट में सुने के कोशिश करी।
1: तो श्रोता लोग, आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी, कैसन लागल जरूर बताई। 98 527 88 291 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84 28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं, पैर छू के प्रणाम करता नहीं, चलता नहीं, अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ, एगो नया कहानी के साथ, फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा, अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत। हंसत रही, मुस्कुरात रही, नमस्कार।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार।

0: सांस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो एमजेम। सुनो दिल।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम।

0: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास दसवीं तक कंप्यूटर एजुकेशन बस फैसिलिटी रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज कॉल अस 9939721308।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडो पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
10: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आमंत्रित कर रहा है टीजीटी समाज विज्ञान पद के लिए। आवेदन पद नियमित है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। मुंबई पत्तन प्राधिकरण में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले उपनिदेशक वर्ग एक के एक पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी विवरण मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in पर उपलब्ध हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए www.mumbaiport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।

0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास। जादवपुर में कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: डीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
4: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपये पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और डीआर कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
13: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
13: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
13: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
13: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
17: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
16: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
17: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
18: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
19: क्यों, क्या हुआ है?
18: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
19: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
18: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
19: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
20: फुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
21: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
20: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
22: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले के कई प्रखंडों में सीओ और बीडीओ का हुआ तबादला। जिला समन्वय समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की गई जान। और महिला से हुआ दुष्कर्म तथा भूमि विवाद में हुई चाकूबाजी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के निर्देश पर गोपालगंज जिले के कई प्रखंडों के अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसकी जानकारी जो सामने आई है उसके अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी अधिसूचना के अनुसार कुचायकोट के नए अंचलाधिकारी के रूप में मनोरंजन कुमार को नियुक्त किया गया है। माझा के नए सीओ शम्मा परवीन को बनाया गया है। उचका गांव का नया सीओ विजय कुमार होंगे तो पंचदेवरी के नए सीओ उमा कुमारी होंगी। वहीं थावे के नए अंचलाधिकारी के रूप में सुधीर कुमार की तैनाती की गई है तो बैकुंठपुर में नए अंचलाधिकारी के रूप में शिवम कुमार को तैनात किया गया है। साथ ही सिधवलिया के भी अंचलाधिकारी का तबादला हुआ है, यहां अभिषेक कुमार को अंचलाधिकारी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट के वर्तमान सीओ मणिभूषण कुमार को लखीसराय भेज दिया गया और माझा के वर्तमान सीओ को सीतामढ़ी के सोनवर्षा में भेज दिया गया है। नई तैनाती के अनुसार कुचायकोट के नए बीडीओ आदित्य प्रकाश बनाए गए हैं। बरौली के नए बीडीओ अजीत कुमार रोशन होंगे तो उचका गांव में नए बीडीओ के रूप में मनोज कुमार पंडित अपनी सेवा देंगे। फुलवरिया में भी नए बीडीओ के रूप में मनीष कुमार श्रीवास्तव की तैनाती की गई है तो वहीं कुचायकोट के वर्तमान बीडीओ सुनील कुमार मिश्रा का तबादला पूर्वी चंपारण के छौड़ा डानो प्रखंड में बीडीओ के पद पर किया गया है। इसी तरह से माझा थावे और भोरे प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों का भी तबादला हुआ। इसकी भी सूचना जारी हुई जिसमें माझा के नए बीडीओ वैभव शुक्ला को बना दिया गया और भोरे का नया बीडीओ मुकेश कुमार को बनाया गया है तो थावे का नया बीडीओ प्रियंका प्रिया को बनाया गया है। आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने अपने विभागों की योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और लंबित कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने का निर्देश दिया। जिले में 65वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इसका आयोजन मिंज स्टेडियम में किया गया था। उत्साहपूर्ण तरीके से जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और इसमें अंडर 17 बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में इस्लामिया उर्दू अकेडमी मीरगंज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्री योगेंद्र ऋषिकुल हाई स्कूल रेवतीत को 2-1 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं श्री योगेंद्र ऋषिकुल हाई स्कूल उप विजेता रहा। प्रतियोगिता के सफल संचालन और आयोजन में शारीरिक शिक्षकों मुरलीधर राय, बसंत कुमार, पिंटू कुमार राय सहित विनीत कुमार शर्मा, आदर्श कुमार पुरी और विवेक कुमार, सुभद्रा कुमारी तथा माला सिन्हा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। जिले के अलग अलग हादसों में तीन लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक मामला हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बाजार का है, जहां सड़क हादसे में साइकिल सवार 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। मृतक सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के महुआ भूसा गांव निवासी 18 वर्षीय रजनीश कुमार, पिता मंजय शाह बताया जा रहा है। रजनीश बुधवार को साइकिल से मिर्जापुर बाजार खरीदारी करने जा रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र में भी एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 8 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गई। अनियंत्रित वाहन ने एक 8 वर्ष के बच्चे को रौंद दिया। मृतक बच्चा मोहम्मद अदनान का 8 वर्षीय पुत्र मोहम्मद एहसान है। यह सड़क पार कर रहा था, तभी उचका गांव थाना क्षेत्र के साखे रामदास गांव में सर्वोदय विद्यालय के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बच्चा इसी गांव का निवासी था। घटना के बाद से बच्चे के परिजनों में चीख पुकार मच गया। इधर गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव में शौच के लिए घर से बाहर निकली एक महिला को जहरीले कोबरा सांप ने डस लिया, जिससे महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद महिला के परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि यह महिला सुजानपुर गाँव के बुलेट शाह की 22 वर्षीय पत्नी किरण कुमारी थी, जो मंगलवार की देर रात शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान जहरीले कोबरा सांप ने उसे डस लिया। महिला को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में रेफर कर दिया, और आज सदर अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला ने पड़ोस के ही युवक पर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर मारपीट करने की भी बात कही गई है। पीड़ित महिला के आवेदन पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल महिला का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का उनके आवास पर पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हें पुष्प माला पहनाकर और अंग वस्त्र देते हुए सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष पटेल ने कहा कि सांसद महोदय के नेतृत्व में बेहतर काम यहाँ किया जा रहा है, जनता की अच्छी सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से निवेदन किया गया है कि सभी लोग बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करें, ताकि सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुँचाया जा सके। गोपालगंज के सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संतोष कुमार का व्हाट्सएप हैक कर साइबर अपराधियों ने 40,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी सागर महतो पिता हीरालाल महतो, दूसरा मुन्ना महतो पिता दीनानाथ महतो, ये दोनों मोहम्मदपुर के ही निवासी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी मनीष सिंह और दूसरा बबलू सिंह, ये दोनों सगे भाई हैं और जगधारी सिंह के पुत्र बताए जा रहे हैं। ये लोग छवही खास थाना माझागढ़ के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज काफी दिनों से गोपालगंज जिले में तैनात सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद का स्थानांतरण हो गया। उनके जगह पर नए सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने प्रभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने प्रभार ग्रहण करने के बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और अस्पतालों में दलालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत खेत बचाओ अभियान के तहत गया जी जिले के टेकारी प्रखंड के सिमुआरा पंचायत के गुलेरिया चक गांव में धान की सीधी बुआई, ढैंचा आधारित हरित खाद एवं संतुलित उर्वरक उपयोग विषय पर प्रक्षेत्र भ्रमण सह प्रशिक्षण एवं किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच धान की सीधी बुआई, ढैचा आधारित हरित खाद और संतुलित उर्वरक का उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैसी वैज्ञानिक एवं संसाधन संरक्षण तकनीकों का प्रसार कर टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सासा मुसा में बजरंग टाकिज के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक परिवार के लोग पिकअप गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। इस घटना में एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई, साथ ही महिला का पति और उनका बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है, दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस पिकअप को लेकर बघौच गांव के रहने वाले सामीनाथ महतो के पुत्र बिरबल महतो अपनी पत्नी 30 वर्षीय रंजू देवी के साथ और बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इस घटना में बिरबल महतो की पत्नी रंजू देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप को चला रहे बिरबल महतो और उनका एक बेटा इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी है, दोनों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से परिवार में मातम पसर गया है। आज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद महिला के शव को परिजनों को सौंप दिया और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। काफी मशक्कत के बाद पिकअप गाड़ी जो ट्रक में फंस गई थी उसको निकाला गया और उसमें से महिला के शव और घायलों को निकाल कर हॉस्पिटल भेजा गया। पिछले 18 जून को विजयपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर मोड़ के पास एक पिकअप चालक को अपराधियों ने गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक शैनुल्लाह शेख को गोली मारने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के शुरुआती जांच में यह मामला लूटपाट का नहीं बल्कि त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एसपी ने इस मामले में एसआईटी टीम का गठन किया था और यूपी पुलिस की एसओजी के सहयोग से छापेमारी करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिकअप चालक शैनुल्लाह शेख को गोली मारने में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का एक मामला दिख रहा है। हालांकि इसमें अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बातें सामने आ रही हैं। इधर पिछले 24 घंटों में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 41 लोगों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान लगभग 600 लीटर देशी विदेशी शराब भी जब्त की गई, साथ ही एक कार, मोटरसाइकिल और दो ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है। वहीं अवैध वाहन चालकों से भी जुर्माने के रूप में 31,000 से अधिक की राशि वसूल की गई है। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें हत्या के प्रयास, SC ST एक्ट के मामले और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट तथा शराब तस्करी जैसे मामलों में गिरफ्तारियां की गई हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के कई प्रखंडों में CO और BDO का हुआ तबादला। जिला समन्वय समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की गई जान। और महिला से हुआ दुष्कर्म तथा भूमि विवाद में हुई चाकूबाजी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 8604348652 पे।
3: ओम नमः शिवाय।
23: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
23: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
23: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
23: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
23: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
23: बोलबम हर हर महादेव।
24: ठक ठक।
25: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
26: अच्छा मिला ही नहीं।
25: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
26: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
25: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
26: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
27: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
28: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
29: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
23: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
26: सुनिए सुनिए सुनिए,
30: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
26: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
30: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
26: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
31: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सुनूँ सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे हर रोज की तरह। और आज आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने का फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करेंगे तो ही आपकी फरमाइश पूरा करने का प्रयास रहेगा, वसरते आप नए गाने का फरमाइश करते हैं तो आपकी फरमाइश को हम नहीं सुना पाएंगे, पेंडिंग में रहेगा आपका फरमाइश। और जो भी पुराने गाने का फरमाइश करेंगे उनकी फरमाइश पहले पूरी की जाएगी। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी अपना कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सोनू भाई, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। रुबीना नाज भलापुर से, और आज मैं भी प्रोग्राम में जुड़ गई हूँ और मेरी भी एक शौक की फरमाइश है। शौक का बोल है नींद उड़ रही है, चैन खो रहा है, जान जा रही है, ये क्या हो रहा है? शौक सभी को डेडिकेट करती हूँ, प्लीज़ सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय नमस्ते, आई एम बीटू शर्मा फ्रॉम पिपराही। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर जी, मुझे गाना सुनना है। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। और आप कौन, अपना फुल मैसेज सेंड करें, हम बिल्कुल आपकी फरमाइश हम ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि कैसे हैं सर, सॉन्ग ओ शाइबा। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और इस मैसेज को करती हैं सरिया फ्रॉम अमो मोजम से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि किशोर कुमार का पल पल दिल के पास, लेकिन आप कौन, अपना तो परिचय दें। जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वो अपना परिचय के साथ अपना मैसेज सेंड करें, अपना नाम जरूर बताएं ताकि आपकी पहचान हो और पहचान के साथ साथ आपकी फरमाइश भी पूरी हो। ऐसा ना करें कि आप केवल गाने का नाम बताएं तो भी फरमाइश पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहचान के साथ ही गाने के फरमाइश पूरा करने का आदेश है। तो आप लोग पहचान और कहाँ से मैसेज करें ये ज़रूर बताएं। फिलहाल हम गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं रुबीना नाज की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने। हम सभी नींद उड़ रहा है, चैन खो रहा है, ना जाने क्या हो रहा है।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रमजीम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। आगे मैसेज और मैसेज पे मैसेज करते जा रहे हैं लखन जी, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। थोड़ा सा सब्र करें और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सोनम भैया, मेरा शौक पूरी करने के लिए आपको धन्यवाद है। रेडियो रमझम सुनने के लिए रुबीना नाज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सोनम भैया, क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है दिल लेने वाले का जोर नहीं चलता, प्यार का सिक्का कहीं और नहीं चलता। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे कुछ मैसेज पहुंचा, हाय नमस्ते एम बिट्टू शर्मा, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंच चुकी है और आपकी भी फरमाइश है, तो एक एक करके आपकी आप सभी की फरमाइश हम पूरा करेंगे। आप जहां हैं वहीं स्थिर है, अगर आप मैसेज करते जाएंगे तो हमारे से दूर होते जाएंगे और हो सके तो कार्यक्रम की समाप्ति भी हो जाए और आपकी मैसेज भी हमें ना मिल पाए। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, हम एक एक करके लाइन बाय लाइन गाने के फरमाइश पूरा करते जा रहे हैं। आप लोग सुनते रहें और इंजॉय करते रहें।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: Excuse me, boss. You have a text message.

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का समय, जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी कार्यक्रम को बढ़ाना है। आगे मैसेज और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सॉन्ग, रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सिंगर किशोर कुमार नाम शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और डेडिकेट करते हैं दिलीप राम जी की। तो दिलीप राम जी तो ऐसे गाने पसंद तो करते नहीं, चलिए डेडिकेट किए हों तो सुनेंगे ज़रूर और आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज करते हैं सुनो जी, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में पुनः। आप बन रहे हमारे साथ, कहते हैं कि मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, आपको यकीन नहीं है तो किसी से मोहब्बत करके देख लेना, बहुत सुकून मिलता है। और जो नहीं किया है वो करना चाहता है, जो किया है वो दूर होना चाहता है, इसी का नाम मोहब्बत हुआ है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाँ भैया मुझको गाना सुनना है, मैं बुलेट चौधरी तीन फेड़िया से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाई से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। तो बिल्कुल एक एक करके फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचाओ बिट्टू शर्मा जी की तरफ से, तो बिल्कुल बिट्टू शर्मा जी थोड़ा सा सब्र कर ले, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और हो सके तो इस गाने के बाद ही। अभी हम लखन जी की गाने की फरमाइश प्ले करने जा रहे हैं और इनके साथ, इनके गाने के साथ हम सभी इंजॉय करेंगे। और गाने का बोल दिए हुए हैं किशोर जी की आवाज़ में, पल पल दिल के पास।

कभी प्यारा संग किशोर जी की आवाज में सुन रहे थे अभी हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और बिट्टू शर्मा जी परेशान है, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और आपकी गाने सुनते हैं। हम सभी यहाँ पे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है और तो बिल्कुल लेके करके सबकी गाने का फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं और सब कोई अपने गानों को लेकर परेशान है, तो थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है कि करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और फिलहाल हम बिट्टू शर्मा जी की फरमाइश पूरी करते हैं और गाने की फरमाइश करते हैं ऊपर वाला अपने साथ है। सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
5: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे मैसेज पहुँच रहा है, लिखा गया है कि धन्यवाद, क्या बढ़िया गाना था। बिल्कुल बढ़िया गाना था और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुपर मस्त सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं सरिया फ्रॉम अमौ से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है भोजपुरी में बोलबम का, और गाने का बोल दिया गया है कि जोड़ी तोहरे से लागो हमार, यह मंगली हाँ ये पगलू। इस गाने के फरमाइश करती हैं निशा, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपका पसंद के गाने। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सोनो भाई जी कैसे हैं? तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, कहते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ।

टेडर एमसीएम 94 एफएम सुनने आप सब, और सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और आगे गाने के फरमाइश किया गया है शबीना खातून के तरफ से, और गाने का बोल दिया गया है कि तुम्हारे शिवा कुछ ना चाहत करेंगे जब तक जिएंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे। और इस गाने को डेडिकेट किया गया है, लिखा गया है कि आपको और ऑल रेडियो दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और फिलहाल श्यामपुर से जुड़ी हैं, तो बने रहो हमारे साथ और गाने के साथ अपने एंजॉय करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि थैंक यू, आपको धन्यवाद, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है तो आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। थोड़ा सा सब्र कर ले, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी तो हो ही रही है। हाँ, बस समय होने चाहिए हमारे पास, और हमारा समय कुछ ही समय में समाप्ति का होने वाला भी है। तो चलिए गाने को प्ले किया जाए और सुना जाए।

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण जी की आवाज़ों में सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि थैंक्स, आपको धन्यवाद है और रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है तेजपुर आसाम से सगीर अंसारी जी की, और उनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और डेडिकेट किया गया है दिलीप जी को, और गाने का बोल दिया गया है रात कली एक ख्वाब में आई। तो आपके गाने हम प्ले करेंगे और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि समय भी हो गए हैं कार्यक्रम की समाप्ति का। तो जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं आज वो कल जुड़ेंगे, और नाराज जी की थोड़ी कम करनी है, क्योंकि समय जो हमें मिला है वो हमने पूरा कर चुका। सो आज के लिए बस इतना ही, आप सब सुनते रहें रेडियो रमझिम 94.4 एफएम, जो हमें सच कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved two major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long, six-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a four-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VB G. Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a three-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate this matter and bring the perpetrators of this act to justice. India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian.

0: And in men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chestiller Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
2: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
2: जी, मैं मनान कपूरा से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ, आज तो बारिश का मजा लिया आज।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, बारिश हुआ है तो मौसम ठंडा है।
2: आपके तरफ हुआ कि नहीं?
1: हाँ हाँ, मेरे तरफ भी हुआ है, 1 घंटा हुआ 9 से 10 बजे के बीच।
2: नहीं तो 1 घंटा तो थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि खेत का पट सिंचाई हो गया है थोड़ा। फिर अब धूप निकलेगा तब मजा आएगा।
1: हाँ, इतना से क्या ही होना है, धूप होगा तो उमस होगा।
2: बहुत मजा, अब कीड़े पतेंगे सब निकलेंगे, सब बहुत तो होगा, कमौरी भी निकलेगा। लेकिन हाँ, राहत मिला है
1: जी,
2: बहुत राहत मिल गया है, इतना राहत। बच्चे सब बाहर निकल के खूब नहा रहे थे।
1: अच्छा लगता है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता है, हमको तो देख के ही उमंग हो गया है, कितना लड़के मस्ती में सब नहा रहे हैं। तो तब आज मैडम, आज दोस्ताना फिल्म का गाना सुनाइए ना।
1: जी, बता दीजिए कौन सा।
2: वो कितना मुश्किल है पर भूल जाना।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
2: आपको नहीं।
1: अच्छा।
2: पहले सोनी जी को।
1: जी जी।
2: और आपको
1: जी,
2: और आपके जितने भी लोग काम करने वाले लोगों को।
1: अच्छा।
2: हम तो सुनेंगे ही।
1: जी जी,
2: है ना। आप पर रेडियो प्रेमी जितने हैं रिमझिम का, खासकर उन्हीं को, है ना, और उनके साथ ये सब डेलीकेट रहेगा। बोल दीजिएगा कि मन्नान बोले हैं सोनी जी को पहले डेलीकेट रहेगा।
1: जी जी, बिल्कुल रहेगा।
2: हाँ बोलिएगा, ये काटिएगा नहीं आवाज।
1: नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे।
2: हाँ, ताकि वो भी सोनी जी तो सुनेंगे ना।
1: हाँ,
2: तो सुन ले तो ख्याल आ जाएगा कि हाँ कोई मन्नान नाम का बोला था कोई। चलिए मेरे सब ठीक है, तब इसी को सुना दीजिए।
1: ओके, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ओके, थैंक यू।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल?
1: अच्छा है, कैसे है मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: आना हो गया ना का?
0: ऐसा हो गया, आपका हो गया
1: जी तो सोमवार को रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। शुक्रवार को
0: होता तो है।
1: तो 12 बजे फोन लगाए थे, एक बार लगा तो कट गया।
0: अच्छा नहीं, शुक्रवार को भी रिकॉर्डिंग हुआ था।
1: मैडम जी
0: हाँ हाँ सब ठीक है, आप बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: गाना कौन सुन के सुना दीजिए।
0: ओके, कौन सा सॉन्ग?
1: सॉन्ग घर और मकान हमारे दुखे, यही गाना।
0: साफ सुनाई नहीं दिया, एक बार और बोल दीजिए।
1: मैंने ये गाना नुआम हमारे दुखे मकान बा तोहरे।
0: अच्छा चलिए ठीक है। और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी आप जितने रेडियो रिमझिम तब दोस्त यार जी हैं सबके साथ।
0: चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्ते मैम, कैसे हैं आप?
6: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
7: बिल्कुल अच्छे हैं। और सब घर परिवार?
6: सबको ही बढ़िया है। आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
7: बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है।
6: अच्छा, नाश्ता हो गया आपका? चलिए बढ़िया है। और बताइए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
7: जी हमें अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनना है, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तो।
6: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
7: जी, सबसे पहले आपको और सभी गोपालगंज जिला वासियों को और सिवान जिला वासियों को, और रेडियो के सबसे बड़े फैन है बुसनियारा मलिक जी है और संद्रा कुशवाहा जी, उनको भी सुनाना चाहते।
6: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: आपका शुभ नाम?
6: मेरा नाम भारती है। आप भी अपना नाम बताते जाइए ताकि इसमें रहेगा तो अच्छा रहेगा।
7: हमारा नाम है राधे समरसिया, करतन सिवान जिला के कबीरपुर गाँव से। बतिया सारा लोग परेशान गर्मी से दिन और।
6: अच्छा जी,
7: ओके, गुड नाइट।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिन 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदन सुधनपुर जिला गुना।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: दीदी हमारे यहाँ तो बहुत बेहतरीन बरसात हो रही है, कल रात से बरसात हो रही है, अभी बरसात हो रही है। जी
1: चलिए बढ़िया, मौसम तो ठंडा होगा आपके तरफ।
0: जी जी जी, और नाश्ता पानी हो गया आपका?
1: जी मेरा हो गया, आपका हो गया क्या?
0: हाँ मेरा भी हो गया।
1: और क्या बताइए, कैसे हैं, क्या
0: सुन रहे हैं दीदी? गाने दिन दिन चलाते रहते हैं दिन भर, और क्या करें। और क्या
1: आज कौन सा गाना सुनना है?
0: जी गाना सुनना था अमनो है जी का।
1: कौन सा गाना?
0: शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी सबसे पहले आपको है, और अपने कजरा की लोधी है, मांगीला जंगल है, मांगीला दाखा है, गोपाल हो जाती है सगवा साहब।
1: जी तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ghandi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: ठीक है, नमस्ते जी।
5: नमस्ते,
6: का हाल बा?
5: हाल तो ठीक बा, अपन बताई।
6: ठीक है बा, मौसम के हाल चाल बताई।
5: आज तो 9 बजे से बारिश भइल है 10 बजे ले। मौसम ठीक बावे
6: हम लोग के तरफ तो पंजाब में बारिश नहीं होता है, कोई होता है, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ता है।
5: अब तो मतलब मानसून आ ही गया है तो हल्का फुल्का बारिश स्टार्ट हो रहा है। अब उधर नहीं होता है क्या कभी?
6: नहीं, कितना दिन से यहाँ कहाँ हो रहा।
5: अच्छा, कोई नहीं, इधर से जाएगा उधर भी घूमते घूमते।
6: इधर भेजिए।
5: हाँ हाँ, बिल्कुल भेज रहे हैं। और सब बढ़िया है?
6: हाँ बढ़िया है।
5: चलिए, बढ़िया होना चाहिए। कौन सा गाना सुनिएगा आज?
6: गाना सुनवा दीजिए, परदेसियों से नवाखिया मिलाना।
5: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाइएगा भी?
6: हाँ हाँ,
5: बता दीजिए।
6: परमात्मा को, बिजली को, धनजय को, हमारा सरहज पूजा को, रानी को।
5: जी जी, चलिए बढ़िया है।
6: कभी कभी हम लोग के टाइम अथी नहीं मिलता है, टाइम का अभाव से थी थोड़ा देर से बंद हो जाता है मोबाइल, तो हमें सुन नहीं पाते हैं, ऐसे कि हम लोग को मालूम नहीं चलता है कि कितना बजे बजेंगे कितना बजे नहीं बजेंगे। तो
5: 5 से 7 बजता है शाम को और सुबह में 9 से 11 बजता है।
6: हाँ।
5: तो चलिए फिर, बढ़िया है। गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ ग्राम खोड़ा मनसिंहा पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार शाह।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आप लक्ष्मी, आप कैसी हैं? आपकी पूरी रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
1: जी सब कुछ ठीक है।
0: घर के मौसम बताइए, मौसम के क्या हाल है?
1: मौसम तो अभी सुबह में थोड़ा सा बारिश हुआ है तो अभी ठीक है।
0: अच्छा,
1: आपके तरफ
0: बारिश हुआ
1: है? हाँ,
0: इधर भी वैसे ही है, इधर ठंडा है, मौसम ठीक है। बारिश हुआ है अभी एक घंटा पहले, अभी छूटा है बारिश।
1: चलिए बढ़िया है।
0: 9 से 10 बजे के बीच बारिश हुआ है, खूब झमाझम।
1: जी जी, इधर भी उसी टाइम हुआ।
0: जी जी, चलिए तब हमारे आपके पास और नैनीताल तरफ मुझे बारिश के पानी बौछार हो गया, खेत के लिए बहुत बढ़िया हो गया, लाभदायक हो गया।
1: जी जी,
0: रोपनी अब हो सकता है, सब लोग करेगा। आपके तरफ रोपाई हुआ है कि नहीं अभी?
1: अभी तो मतलब बीज गिरा है तो अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा और 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा।
0: तो हो गया है हम लोग के गांव में, लेकिन फिर भी कुछ लोग के बाकी है, अभी कुछ लोग के छोटा छोटा बिया है, इसीलिए
1: शुरू हो गया है, लेकिन
0: हाँ
1: थोड़ा बाकी है।
0: तुझे तो इधर भी हो गया। चलिए ठीक है, बढ़िया।
1: कौन सा गाना?
0: हाँ, आज फरमाइश, आज फरमाइश सुना दीजिए, है लता मंगेशकर की आवाज है, मेघारी मेघा मेघारी मेघा, इसे करके गाना है, वही सुना दीजिए, क्योंकि आज बारिश हुआ है तो पानी क्यों उतरता है, मन क्यों उतरता है, तूने किसको याद किया, इसी करके गाना है।
1: गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको, रेडियो रिमझिम संपन्न परिवार को, और दोस्त में हो गए मामा साबे जी, मजे से उत्तम कुमार जी, हमने आपको सबको स्वागत की प्रभा से, अर्जुन कुमार कला बैकोर धाम से, नरेश सोनी, नसीदीन खान, दीपक दास, उदय भान ठाकरे, छिंदवाड़े मापल दे से, राजेंद्र जब भारती, संतलाल गौतम, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्तों, और विशेष करके मामा सलाह अंसारी है मझेलिया को, उनको सुनाते हुए संतलाल गौतम, राजेंद्र जब भारती को सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो रिमझिम सुनते रहिए।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो मैम, नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कैसन बानी?
5: हम तो ठीक बानी, रउवा बताई रउवा कैसन बानी?
6: बस ठीक है बानी, आज छुट्टी रहेला ना। आज सोमवार का छुट्टी रहेला।
5: सब और सब का होता है?
6: बस का हुई, अभी नहा धोया के रावरे रावरे एक खाती हवा खबर न होई नहीं हो कि तुम कॉल करे के बाद न तो लेट हो जाए।
5: चलिए बढ़िया बा, नाश्ता
6: अभी नहा धोया के कॉल कर
5: तो नाश्ता तो कैले ना हो सैम
6: ना अभी का।
5: बता दी कौन सा गाना सुने?
6: गाना तो आज खुशबू सिंह की आवाज में सुने के बा।
5: कौन सा गाना?
6: राजा कहियो मावर खा के मर जाए।
5: अच्छा, और ये गाना क्यों के सुना होंगे बा?
6: बस रौरा के सोनी मैम, जितना लोग सोनी सुन ली। सोनी मैम अभी आई कि नहीं?
5: आई है।
6: और सब बढ़िया, पूरा परिवार?
5: सब बढ़िया।
6: चलिए सब ठीक है, सुनाइए।
5: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
6: सुनाइए, ठीक है, ओके।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में।
1: गुड आफ्टरनून,
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: पहचान रहे हैं क्या?
0: जी
1: कैसे पहचान गए आप?
0: आपकी आवाज सुने तो पहचान गए।
1: आवाज तो सुना तो मेरा क्या नाम है?
0: क्या नाम है? गणेश नाम है।
1: अच्छा, चलिए ठीक है। और सब बताइए?
0: और सब बढ़िया है।
1: तो बारिश हुआ है आज?
0: इधर तो बारिश हुआ है, आपके तरफ हुआ है या नहीं?
1: मेरे तरफ हुआ है, बाकी बहुत कम बारिश हुआ है।
0: अच्छा, हाँ इधर भी हल्का हल्का हुआ है, मतलब एक घंटा हुआ, थोड़ा थोड़ा मतलब धीमे धीमे हो रहा था।
1: मतलब खेत में बारिश नहीं लगा है पानी।
0: चलिए, जितना नहीं होना था उतना भी हो गया, तो उतना भी राहत दिया है।

0: महबूब के घर जाना है यही।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: डेडिकेट रहेगा आपको, सोनी मैम को, देविया मैम को, पहचान रहे हैं?
1: नहीं, हम आए तो वो नहीं थे, बस सोनी जी से मिला था।
0: तो सब लोग का डेडिकेट रहेगा, मेरे बहन है करिश्मा, उसका भी डेडिकेट रहेगा। फोन धराए हैं, हाँ मैं बोल रही की देवी जी में बात करेंगे, बताइए ना, ये कोई बात हुआ?
1: नहीं,
0: ऐसा ही तो फोन नहीं लगता है, आज मेरा व्यवस्था नहीं, कुछ बताया पहले ही कॉल लग गया।
1: तुरंत का कॉल कटा हुआ था।
0: अच्छा, मतलब आज बीजी जी बताया था, सबसे लग गया था।
1: नहीं तो टाइम भी तो मतलब 12 बजने वाला, इधर थोड़ा कॉल स्लो हो जाता, उधर एकदम लगातार आता है,
0: इसलिए अब उधर नहीं लगाएंगे, इसी समय लगाएंगे, ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, पहचान रहे तो कोई बात नहीं है, और सारा कस्टमर लोग है, देख रहे हैं कि फिर लगा रहे हैं, लग जाएगा तो ठीक है, मेरे बहन बोल रही है कि मैं बात करेंगे।
1: अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ,
0: ठीक है।
1: 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते, क्या हाल चाल?
3: क्या हाल चाल बा?
2: हमारा बढ़िया, आप बताइए।
3: हमारा ठीक बाटे, यार सब ठीक बा न?
2: हमारा ठीक बा है। खाना हो गए का?
3: रात हो गए की ना?
2: हम तो खाना खा के आए नहीं अब घर से, अब एज लेके आए नहीं सन, तो 1-2 बजे के आस पास खानी सन।
3: ठीक है नहीं, हम कहाँ से बोलते नहीं?
2: करिश्मा बोल रहे हैं।
3: अच्छा, चीन गल बनी?
2: हाँ, पहचाना तो नहीं।
3: चलिए पहचाने की चाहे। चल गाना सुना बता हमारे।
2: बता दी कौन सा गाना?
3: मेरी कमर से ये कॉल सुना दी।
2: अपना पसंद से तब लो।
3: अच्छा, पसंद से सुने?
2: अच्छा, भोजपुरी में तो उतना हम सुन ले नहीं की तो हमारा बुझेबे ना कर ले रोल
3: बताए। कौन में बजा दी? चाहे देव भाई कौन बजा दी?
2: अच्छा,
3: भैया फोन कर रहे ना हमका। ठीक बा,
2: डेडिकेट भी बा।
3: हाँ दीदी के सबसे पहले दरवा के रहिए, अगर बाद हमरा आ रही जितना सुनता ही लग रहा
4: है से जान पहचान हो गई
3: दीदी में उनसे भय रहा सब
2: पूछे नहीं कहे नहीं के बाजत गाना उनमें।
4: हाँ सुना तो पूछे ना, मेरे खूब बढ़िया से जानता नहीं।
2: और सब घर में सब क्यों ठीक बनो?
3: हाँ सब क्यों ठीक में लगवा घर में।
2: हमने ठीक बनी
4: को अपना साथी लोग लगे बैठल रही।
2: अच्छा,
3: बारिश होता है?
2: बारिश तो भय रहा 9 से 10 के बीच में।
3: हाँ ये नहीं भय रहा खुलल बटे तो बैठल बनी सुन दुआ।
2: अच्छा चलो, कहीं तो बैठ के थोड़ा बहुत मस्ती कर लेवे के चाहिए। तो जान पहचान भी होकर जरूरी बाबे, केहू केहू से बात करे की इच्छा होला।
4: नहीं,
2: गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं डॉक्टर अमोद कुमार वहाँ ग्राम जिला
1: जी। क्या हाल चाल है आपका?
0: अच्छा है मैम।
1: मेरा भी है।
0: और मौसम है आज उधर का?
1: मेरे यहाँ का मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
0: हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, अभी सुबह में बारिश हुई है।
1: अच्छा, इधर भी हुआ है हल्का हल्का बारिश सुबह में 9 बजे से।
0: जी जी, हमारे यहाँ उस समय ही बारिश हो रही थी 9 बजे करीब। इस समय थोड़ा सा बारिश बंद है, मौसम ऐसा सुहाना बना हुआ है।
1: जी जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
0: गाना सुनवा ये तुम्हें देखे मेरी आँखें अमेरिका है।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: बस आपको और पूरे रिंजिम के जितने भी श्रोता है सभी को, रिंजिम और पूरे परिवार सभी को सुना दीजिए।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हाँ हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: हेलो,
6: हाँ जी बोलिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
5: हाँ ठीक है मैम, अपना सुनाइए।
6: मेरा भी ठीक है।
5: एक गाना सुना दो।
6: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
5: नदिया के पार का कोई सॉन्ग बजा दीजिए।
6: नदिया के पार का कौन सा सॉन्ग?
5: बबुआ हो बबुआ।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
5: जी।
6: बता दीजिए किसको?
5: हमारे वहाँ काम करते हैं हमारे वीरेंद्र जी हैं, राजू जी हैं, मनोज जी हैं, विजय जी हैं और भी सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी भाई बंधु।
6: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: हम थावर से, रामाजी प्रसाद, राजन मार्केट से।
0: जी जी,
1: आज देखो बारिश भइल है कि ना?
0: हाँ हाँ, बारिश से ना भइल है, 9 बजे
1: हाँ भइल है बारिश, नगर पानी गिरल है आज। फिर तो हाउस हो गया, बारिश गिरा बाद फिर बुझाते अंदर से हाउस बा।
0: अभी तो पूरा तरह से धरती गीला नहीं है ना भइल, अभी तो उमस होखबे करी।
1: तो गाना सुना दी।
0: बता दी कौन सा गाना सुने।
1: बायापुर भैया समान कर झूमे जैसे मनवा नाते मोर।
0: अच्छा, और गाना क्यों के सुना हूँ के बा?
1: जितना लोग सुनते सब कुछ सुने, हम सुने, रवा सुने।
0: चले ठीक, और सब ठीक बा ना?
1: हाँ सब ठीक बा।
0: तो फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे
1: सुनते, 5 बजे सुनते रहला।
0: हाँ हाँ,
1: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी मैडम नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: कमलेश बोल रहे हैं हरक मार।
5: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: ठीक है मैडम, आप लोग का आशीर्वाद। अच्छा है मैडम, लेकिन आज काम उम नहीं चल रहा है, ठंडा मौसम है, बारिश हुआ है थोड़ा सा।
5: मौसम तो ठंडा हुआ है।
6: हाँ बहुत ठंडा हुआ है। अच्छा है,
5: तो नाश्ता हो गया है आपका?
6: जी मैडम हो गया है, बैठे हुए हैं, गाना सुनना चाहते हैं।
5: अच्छा बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
6: वो गाना नहीं है, बिछुआ भूल ना जाना, कोई गाना सुनना चाहते
5: को डेडिकेट भी है।
6: हमारे साथ में पवन जी है, धनंजय प्रभासी है, उनको सुनाना चाहता हूँ, जितना लोग सुन रहे हैं सब किसी के साथ और आपको भी।
5: अच्छा जी, लगता है कहीं किसी पेड़ के पास बैठे हैं, चिड़ियों की बहुत चहचहाट आ रही है,
6: ठंडा मौसम है, अभी जामुन के पास में बैठे हैं।
5: तो गाना प्ले करते हैं।
6: जी मैडम
5: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम 90.4
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, हेलो,
1: क्या हो रहा है मैम?
0: जी कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। आप बताइए आप क्या कर रही हैं?
1: कुछ नहीं मैम, बस बैठे हैं।
0: अच्छा, तो नाश्ता हो गया आपका?
1: हाँ मेरा हो गया। आपका हो गया? मैम गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: मैम विदेशी में के गाना सुनना है।
0: कौन सा गाना?
1: काहे करे लो फोन यारो।
0: एक बार और बोल दीजिए, आवाज कट रहा है आपका।
1: विदेशी लोग का गाना सुनना है, काहे करे लो फोन यारो।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: आपको और सारे, मतलब सारे सुनने वाले सुनता है।
0: अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना।
1: गुड़िया कुमारी।
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: मैं मोहम्मद यूसुफ, अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला।
7: कैसे?
6: हाँ, अभी तो मौसम सुबह में पानी इधर हुआ है। मौसम अभी बहुत अच्छा है, इधर सुहावना मौसम है।
7: चलिए अच्छा है।
6: हाँ, उधर गोपालगंज में?
7: हाँ, इधर भी हुआ है तो ठीक है मौसम अभी।
6: हाँ, मौसम ठंडा है। बड़ी व्यस्त बता रहा है आपका मोबाइल।
7: अच्छा।
6: हाँ, पाकिस्तान, सुनिए ना, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना आसान है, आपके यहाँ फोन लगाना आसान नहीं है।
7: अच्छा,
6: घंटा पेड़ते रहिए तो अब जाके पकड़ता है।
7: अभी तो कॉल कटा तो तुरंत आपका कॉल आया।
6: हाँ, तो बड़ी देर से लगा रहे थे ना।
7: कॉल ज्यादा ही हो जा रहा है।
6: बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका कस्टमर इतना ना बढ़ गया है, पूरा बहुत लोग जुट गए हैं आपके साथ है।
7: जी,
6: आप लोगों का जो आवाज है आपका, और तो बहुत सोनी का बहुत अच्छा आवाज है। आप भारती जी बोल रहे हैं ना?
7: हाँ हाँ
6: हाँ, तो आप दोनों अभी बेमिसाल हैं।
7: जी, सब आप सबकी कृपा है।
6: हाँ, बहुत सुंदर, बहुत मीठा आवाज आप लोग दोनों आदमी को, हमको समझ में ना आता है कि कौन बोल रहे हैं।
7: अच्छा,
6: एकदम एक आवाज में,
7: कभी कभी हो जाता है।
6: हाँ हाँ, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको गाना सुनाइएगा।
7: बता दीजिए।
6: बांसुरिया अब यही पुकारे।
7: अच्छा,
6: अपना मेडिकल के सभी स्टाफ और खास करके आपको और कन्हैया प्रसाद जो फौजी से रिटायर किए हैं, वो आपका हरदम रेडियो सुनते रहता है, तो वो आकर के सुन के हमको बताते हैं दुकान पर।
7: अच्छा।
6: कहते हैं कि आपका गाना, उधर हम व्यस्त हो गए थे कुछ दिन, कह रहे थे कि आपका परमेश्वर नहीं आ रहा है, अपने थोड़ा दूसरे काम में लगे हुए हैं, बिजी है, इसलिए नहीं आता है। तो बराबर सुन करके वही बताते हैं हमको, तो फुर्सत को हमें मिलता है, कभी सुन पाते हैं कभी नहीं सुन पाते हैं।
7: सुनता है ना कोई, तो सुनता है ना।
6: हाँ, इसलिए तो आपसे, आप लोगों को आवाज ही हमको इतना अच्छा लगता है कि हमको, इसलिए हम फोन लगाते हैं आप लोगों को।
7: चलिए,
6: अब सोनी जी और अब फिर आप अभी आ रहे हैं आप।
7: सोनी जी अब तो मतलब जाएंगे लाइव।
6: हाँ, वो लाइव में रहती हैं। उनका ड्यूटी चेंज हो गया है।
7: चलिए फिर रखते हैं।
6: हाँ ठीक है ठीक है, गाना सुनवाइएगा।
7: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस आज तो पहला ही कॉल लगता है हमारा ही शामिल हो गया मैम।
1: जी जी,
0: आज तो बहुत इंतजार भी नहीं करना पड़ा मैम।
1: हाँ हाँ, क्योंकि अभी जस्ट जैसे शुरू किया आपका कॉल आया।
0: जी जी जी जी मैम,
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: बस कुछ नहीं, आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम। भाव तो काम तो अपना चल ही रहा, मशीन चला रहे थे जेसीबी, बस हम देखे अभी 11 बज गए, बस ट्राई किए, फोन भी लग गया मैम।
1: अच्छा जी, चलिए तब बढ़िया है। बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: और गाना चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: भौजी मत लेके जाए, भौजी राजा के हमले से दूर मत लेके जाए, भौजी हम तो हर पाप पर ताली, भौजी।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes only on Chanda Cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes only on Chanda cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।